0: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: Five, four, three.

0: आपको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे, काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।

0: कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएगी।

0: You are listening Acharya 90 FM, your own radio. Today we have with us Ms. Achal Singh and guest with us Ms. Smita Mishra. And also we have our own intern Pranav Nair. And we are going to talk about suicide prevention. Let me introduce our guest. So Smita is mental health professional visiting faculty at NMIMS College, actively doing awareness session around mental health, and a trauma-informed psychologist. So, I would like to ask a question to our guest, Smita ma'am. Let's tell our audience the basic, what is mental health?
1: Okay. So, mental health, again, we isolation mein I feel discuss nahi karna chahiye. Jab hum health ki baat karte hain, health mein हेल्थ की अगर WHO की डेफिनेशन को हम देखें तो इट टॉक्स अबाउट कि अ हेल्दी पर्सन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिजीज़ का एब्सेंस है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्प्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ सब काम करता है. तो मेंटल हेल्थ, अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, लोग जो है उसे कन्फ्यूज करते हैं मेंटल इलनेस के साथ. सो नॉट एवरी वन इज मेंटली इल, बट एवरी वन हैज अ मेंटल हेल्थ. They need to take care of just like they take care of their physical health. It's about their emotions, their feelings, their personality. That's about it.
0: So, actually, हम देख रहे हैं कि specifically अगर बात किया जाए young adults के बारे में, what would be your advice on mental health? How they can prevent themselves from the suicidal thoughts and everything?
1: How they can prevent themselves from suicidal thoughts? ओके, आई थिंक अगेन हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सुसाइडल थॉट्स, उसके रूट्स क्या है एंड क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, देन हाउ कैन वी प्रिवेंट इट. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय सुसाइडल थॉट्स. जब एक व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, देयर इज नथिंग फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड टू, और काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो इस पेन को ख़त्म करने का जो एकमात्र तरीका है, इट इज़ टू एंड दिस लाइफ. तो अगर ये लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसा कोई पेन भी नहीं होगा. दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट सुसाइड इज. एंड देन हाउ दे कैन प्रिवेंट इट इज, देयर आर डिफरेंट methods to do that, but जब हम suicide prevention के बारे में बात करते हैं, I just want to take a moment and highlight कि जो suicide prevention का responsibility है, ये अकेले एक बच्चे के ऊपर या अकेले एक individual के ऊपर नहीं आना चाहिए, जो usually आता है. क्योंकि हम suicide prevention के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि it is up to that individual or their therapist, but I feel that prevention is a collective responsibility. When I say collective responsibility, I mean ki everyone has a role. A teacher has a role, a parent has a role, classmates or peer has a role. Larger scale mein dekhe to school as an institution ya office as an institution has a role. Media has a role ki wo kaise depict kar rahi hai, kaise present kar rahi hai suicidal cases, kya usko wo sensation bana rahi hai ya sensitively handle. Then a very big role of policy makers, government, state. Do they have that enough resources जहाँ पे prevention के लिए, मतलब वो condition है जहाँ पे वो last stage पर पहुँचेगी ना, तो prevention के लिए अकेले एक बच्चे पे वो नहीं आना चाहिए कि how they should do it. It should be a collective effort because it's a collective responsibility.
2: I wanted to ask, what do you think, what is the very general problem that every teenager go through which might lead to take this big step in their life? It can be anything, but what do you think with your experience is the general problem a student or a teenager go through?
1: Okay, since you're asking about just general problems, again a disclaimer that whatever I will share here right now is based on my readings, my personal आई विल शेयर, वो ज़रूरी नहीं कि सबको इक्वली वैसा अप्लाई हो, सबके केसेस अलग अलग हो सकते हैं, बट जो रेकरेंट चीज़ें हैं आई माइट इवन मिस आउट ऑन फ्यू, बट जो डेटा भी हमें बार बार बताती है दैट इज ए वुड बी लोनलीनेस. लॉट ऑफ टीनेजर्स और लॉट ऑफ यंग अडल्ट्स टुडे फील लोनली डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम, एंड इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग टू फील लेस लोनली. अगर 2023 में WHO ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि इट्स अ पब्लिक थ्रेट, लोनलीनेस इज अ पब्लिक थ्रेट, बट ऐसा नहीं है कि नहीं ट्राई कर रही है. उसका जो कॉन्ट्राडिक्ट अगर हम आयरनी देखें तो यही जनरेशन है जो एक्सट्रीमली ट्राई कर रही है टू फील लेस लोनली. देयर इज प्रेशर टू एंजॉय, देयर इज प्रेशर टू हैव फन, प्रेशर टू मेक कनेक्शंस. इट्स द सेम थिंग लाइक इफ वी वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डेटिंग एप्स. अ लॉट ऑफ यंग अडल्ट्स, अ लॉट ऑफ टीनेजर्स, अ लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर यूजिंग डेटिंग एप्स, एंड आई एम इन नो पोजिशन टू से कि वो यूज़ करना गलत है या नहीं है. इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट इज़ हेल्पिंग पीपल फाइंड कनेक्शन, देन वाई नॉट. बट देन देयर समथिंग कॉल्ड एज डेटिंग बर्नआउट, जो लोग फील कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर टू वर्कप्लेस बर्नआउट. और वर्कप्लेस बर्नआउट में भी वही इमोशनल एग्जॉशन होता है, सब कुछ लाइक एवरीथिंग इज सेम, इज जस्ट दैट द डिफरेंस इज यहाँ पे हम जो स्वाइप करते हैं डेटिंग ऐप में, द जॉब हियर इज टू फाइंड कनेक्शन. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जॉशन दैट दीज पीपल डिग्रेशन फील, सॉरी फॉर द टर्म, आर जनरेशन फील टू मेक अ मीनिंगफुल कनेक्शन. सो देयर इज लॉट ऑफ सेंस ऑफ लोनलीनेस, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस दिस ऑल्सो कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप. एंड व्हेन आई से रिलेशनशिप, इट इज बियॉन्ड टू पार्टनर्स हू आर डेटिंग, इट गोज टू द फैमिलीज एज वेल. अ लॉट ऑफ द टाइम अ टीनेजर सिंपली फील्स कि वाई आर दे नॉट लिसनिंग टू मी, या why is it so difficult for them to understand what I'm telling them. On the other hand, parents are like, we are trying to protect our children, and whatever we are saying is because of their own betterment. So there's a lot of conflict, there's a lot of communication gap, and this communication gap is also, there's also emotional gap, ki hum nahi samajh pa rahe ki what the other person is feeling. So that is B. I think I pointed out loneliness and then family conflict, and there's also external pressure like societal pressure about performance, about marks. Marks se related kafi zyada news mein aa jata hai about the cases, but it is only just a tip of the iceberg. So agar hum data ki baat kare to only 1 point something people are only like. And also one more thing, ki there is not one particular cause to suicide. Agar again so media mein bhi represent karte time kafi log na narrow down kar dete hain. Agar aapko recent रहेगा न्यूज़ में जो आया था अबाउट वन फैमिली, अ टीनेजर जंप फ्रॉम द क्लिफ एंड देन बोथ द पेरेंट्स आल्सो फॉलोड, एंड मीडिया में उसने उसको सेंसेशन बना दिया गया था जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीज़न के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया. बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन पर्टिकुलर रीज़न, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सो मेनी अदर स्ट्रेसर्स दैट अ पर्सन इज फेसिंग.
3: सो मैम आई डू हैव अ क्वेश्चन अबाउट लाइक आपने बोले करके फैमिली के बॉन्ड की वजह से भी जो पर्सन है वो सफ़र करता है. सो आई डू वांट टू नो करके अगर फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है, ऑन अ पर्सनल नोट आई थिंक आइदर द पर्सन चूज अनदर कैरेक्टर टू लिव, लाइक वो उन्हें हाई पे भी लेके जा सकता है, एंड ऑन अ नेगेटिव नोट वो पर्सन एक्सट्रीम डिप्रेशन में जा सकता है. आई डू वांट टू नो योर थॉट्स ऑन दैट.
1: Help me understand the question better. You said that the conflict between parents.
3: Should I repeat,
1: ma'am? Yeah, please.
3: Like, ma'am, अगर एक बच्चे का अपने dad के साथ में अच्छा bond नहीं है, so वो perspective से वो बच्चा either एक another personality choose करके एक high पे जा सकता है.
1: Another personality would be?
3: Another personality, ma'am, like give on the emotion, like emotions को पीछे छोड़ के. तो ये इफेक्ट करता है क्या मेंटल हेल्थ को?
1: यस इफेक्ट करता है, बट आई थिंक अब दो चीज को कंपेयर कर रहे थे. आई वुड वांट यू टू कंप्लीट.
3: इफेक्ट करना इन द सेंस, अब ये जैसे बच्चा अगर अपने मॉम डैड से थोड़ा दूर रह रहा है, सो लाइक वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो रहा है उसके पास, सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिप्लेस द थिंग्स विद सम अदर स्पोर्ट्स हो गया लाइक उनके उसकी पर्सनल लाइफ हो गई सो डज इट हेल्प
1: ओके नाउ देयर समथिंग कॉल्ड एज कोपिंग मैकेनिज्म जो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है नाउ इन दिस सिचुएशन कहीं पे सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है अगर फैमिली इन जनरल टॉक्सिक है कि वहाँ पर रह के हमारा एनर्जी और ड्रेन हो रहा है हम खुद से और एक्सप्लोर चीज़ें नहीं कर पा रहे खुद को और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे देन फॉर समवन इफ दे हैव गुड कोपिंग मैकेनिज्म लाइक इफ दे आर एज यू सेड कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं किसी आर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इट डज हेल्प देम
2: A lot of students where I see that all of a sudden changes in behavior and suddenly वो एकदम शांत हो जाते हैं suddenly behavior change हो जाता है so that I'm noticing but at the same time I also wanted to understand कि क्या as a teacher or let's say as a older people than the younger ones कैसे हम वो pattern को समझें and what we can do for them
1: okay
2: and how will we comfort them or make them
1: thank you so much for this question ma'am coming from a teacher jaise main starting mein kaha tha ki collective effort hai sabka role hai so I'm very glad that this question is coming from a teacher's perspective ki agar student ya irrespective like the relationship koi humse chota kisi distress mein hai तो पहले हम वो साइंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें आपने करेक्टली कहा कि जैसे अगर बच्चा तो हमें थोड़ा नोटिस करना है कि सडन चेंज क्या आ रहा है पर्सनालिटी में अगर आउट गोइंग बच्चा है सडनली शांत हो जा रहा है तो एक वो क्लियर कट साइन है बट देन इसके अलावा भी कुछ साइंस है जो हम मिस कर देते हैं जैसे कि अगर बच्चा हमें पता है कि किसी डिस्ट्रेस से गुजर रहा था उसके बारे में बात कर रहा था लेकिन सडनली अब काम हो गया है एकदम ही शांत हो गया या फिर एकदम ही पॉजिटिव वे में सब चीज़ें ले रहा है तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि नाउ थिंग्स आर बेटर बट एक्चुअली थिंग्स आर द थिंग इज मेंटली उसने गिव अप कर दिया मेंटली उसने एक डिसीजन बना लिया है कि अब तो टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है अब रो के भी कोई फ़ायदा नहीं है दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू नाउ व्हाट एज अ टीचर वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस इज फर्स्ट जब आप चेंजेस ये सब देख रहे हैं एक्नॉलेज दैट sit with that child and be verbal about what you saw or what you noticed and without beating around the bushes directly ask are you thinking about killing yourself are you thinking about suicide now ye bolne mein bahut discomforting lagta hai ki ye directly kaise bole matlab isse to fir ho jayega ki hum ideas de rahe hain lekin agar aapne dekha ki kahin kahin signs hai bachcha bol raha hai ki there's no point in leaving या मेरा बस हो गया है या देख रहे हो आपके बच्चा कहीं पेरेंट्स अगर ये सुन रहे हैं तो बच्चा सडनली अपने पासवर्ड सब लिख रहा है या सडनली रैंडमली किसी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट साइंस टू पिक अप एंड देन डायरेक्टली आस्क कि इज देर एनीथिंग यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई एम हियर टू लिसन टू यू और डायरेक्टली वो टॉपिक निकालो क्योंकि हो सकता है कि आपके अलावा एज ए मतलब टीचर ने उनको पूछा है शायद उसके अलावा पहले किसी ने नोटिस नहीं किया हो पहले कभी किसी ने ये शायद ये थॉट के बारे में उन्होंने भी खुद से कभी बोला ना हो तो वो जब आप सामने से डायरेक्टली पूछेंगे तो उन्हें एक स्पेस मिलेगा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आई टोल्ड यू कि पिकअप ऑन दैट एंड सो किसी को अगर कंटिन्यू करें हम तो गेट कीपर ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि सुसाइड प्रिवेंट कैसे करें क्या नेक्स्ट स्टेप करें तो एक मॉडल होता है विच इज़ कॉल्ड एज क्यू पी आर मॉडल तो क्यू में यू आस्क क्वेश्चंस एंड देन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली पूछो देन पी में इट इज़ नॉट लाइक कि आपको सडनली उसको परसुएड करना है कि डोंट डू इट सडनली वो होगा भी नहीं और वो शायद उस स्टेट पे है भी नहीं कि सारी लॉजिकल रीजनिंग वो एक्सेप्ट कर पाए तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप डिले करें जितना उनके मतलब असेस करें क्वेश्चनिंग के टाइम पे कि रिस्क कितना है अभी असेस कैसे करेंगे चेक करना कि सिर्फ आइडिया है या प्लान भी है तो सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल प्लान भी है अगर उन्होंने प्लान भी करके रखा है कि के आसपास ये है तो आई कैन डू दिस या आई कैन जंप फ्रॉम दैट, सो इट्स द रिस्क इज मच हायर एट दैट टाइम. तो वो रिस्क असेसमेंट करने के बाद पर्सुएशन में यू जस्ट हैव टू सिट देयर विद देम, पर्सुएड देम दैट दिस इज नॉट द टाइम टू मे टेक एनी एक्शन एंड आई एम हियर विद यू. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग देम सोल्यूशन जस्ट टेल देम दैट दे आर हियर विद यू. तो वो लोनलीनेस का जो मैंने कहा था वो भी थोड़े उन्हें फील होगा कि येस समवन इज देयर एंड दे डू नॉट हैव टू कैरी दिस मच पेन ऑन देयर ओन, समवन इज देयर फॉर देम टू शेयर इट विद. बोलो कि हम साथ में ये चीज़ हैंडल करेंगे एंड देन आर इज टू रेफर इट टू पीपल हु आर एक्सपर्ट, फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट, इमरजेंसी केयर सेंटर्स. अगर ये सब इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप उनके साथ बैठो और बोलो कि लेट्स टुगेदर कॉल देम एंड लेट्स टॉक टू देम. तो टेली मैनेस एक हेल्पलाइन नंबर है, आई कॉल इसका आई कॉल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये आप हेल्पलाइन नंबर उसे दो देन उनको इमीडिएटली छोड़कर ये सब देख के चले ना जाए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने रिस्क असेसमेंट किया है लग रहा है हायर है तो बी अराउंड देम एंड सी कि आसपास उन्होंने कोई भी ऐसे लीथल मटेरियल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सेल्फ हार्म हो सके, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा एरिया जहाँ से वो जंप कर सके. सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू स्टे अराउंड देम इवन इफ दे पुश यू कि नहीं आई डोंट वांट टू टॉक टू यू आई डोंट वांट टू सी यू, तभी भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे विद दैट पर्सन. वहाँ पर
2: वेरी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेटली ये सभी के काम आने वाला है, नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ एडल्ट हु इज grown person and not only grown person but whoever it is listening.

0: आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो छोटे से छोटी चीजों को लेके डिस्टर्ब होते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी कुछ शेयर ही नहीं किया, बट दे आर इन टू वेरी मेजर, आई वुड नॉट यूज वर्ड डिप्रेशन, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई होती है, वो शेयर नहीं कर पाते. दे बिहेव वेरी नॉर्मल. एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं कि छोटी से छोटी बातें होती है तो दे आर एक्सप्रेसिव, सो दे आर नेचर इज डिफरेंट.
1: हर स्टूडेंट का तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का. कई लोग कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए कर पाते हैं, कई लोग कंफर्टेबल होके भी उन्हें शायद नहीं वोकैबुलरी मिल रही है कि कैसे कर पाए. और मैम आपने एकदम चीज़ बोली कि कई बार बच्चे जो है डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं बट कभी वो दिखाते नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस बिकॉज इट्स अ वेरी रियल थिंग. कई बार अगर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके घर पर किसी ने सुसाइड किया होता है तो लोग बोलते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, या कभी लगा ही नहीं कि ये इंसान अपनी जान दे सकते हैं. तो बाकी सारे जो चेंजेस हैं बिहेवियर में, इमोशन में जो दिख रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, बट काफ़ी बार साइंस ऐसे हो जाए जो नहीं दिखाई देते, या जो काफ़ी नॉर्मल हो गई है कि हमेशा हंसते रहना, एक दूसरे की हेल्प करते रहना, तो लोग जो है यहाँ पर फिर बात नहीं करते, उनको लगता है सब ठीक है. तो अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर सब ठीक है तो भी टाइमली चेक इन करना और कम्युनिकेट करना, चैनल देना फॉर ओपन कम्युनिकेशन कि अगर कुछ है तो आप आके मुझसे बात कर सकते हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ सिंपली अज्यूमिंग कि ये इंसान तो सब अच्छे से कर रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके. लेट्स नॉट अज्यूम दैट.
0: एंड आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोशल मीडिया वेयर पीपल हैव लॉट ऑफ यू नो, मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है दूसरे स्टूडेंट्स को हरास कर रहा है. देयर विल बी हरासमेंट, देयर विल बी अ डिप्रेसिंग थॉट्स वेयर स्टूडेंट इज शेयरिंग दोस काइंड ऑफ अ थॉट्स. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडेंट्स, एनीवन.
1: ओके,
0: तो वो पैटर्न ऑब्जर्व करना इज दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
1: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे दो टॉपिक है, पहला एक हरासमेंट का है एंड दूसरा साइंस जो हमें सोशल मीडिया पोस्ट में दिखता है रिलेटेड टू सुसाइड. हरासमेंट इज़ अ वेरी इज़ अ थिंग दैट वी नीड टू रिपोर्ट. अगर हमें पता चल रहा है कि किसी बच्चे का पिक्चर किसी ने गलत तरीके से यूज़ किया हो, या उन्हें कोई ऐसा कॉन्टेंट शेयर किया हो गया हो विच इज़ एक्सप्लिसिट या दैट मेड अ पर्सन फील अनसेफ, दैट इज़ वेरी देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिपोर्ट दैट केस एंड साइबर सिक्योरिटी का वहाँ पर हेल्प ले. सेकेंड अबाउट समवन पोस्टिंग थिंग्स विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, या कोई ऐसी पोइट्री लिखना जहाँ पे थोड़ा सा सैडनेस जो है वो झलक रहा है, या सैड स्टेटस लगाना, तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो हर महीने का है, इसका ये अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी है, ये करते हैं. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि पिक अप दैट साइन, इवन दो इफ इट्स एन अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी, दे आर टेलिंग यू दैट दे नीड अटेंशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट इग्नोर दैम. एंड हो सकता है कि उनकी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी ही हो कि वो सैड सब कुछ पोस्ट करें, फिर भी उनसे बात करो, टाइमली चेकअप करो, शायद वो डिसमिस करे इस चीज़ को, ठीक है शायद नहीं है वो चीज़, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, राइट? वॉट इफ एवरीथिंग वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ देम एंड हमने अज्यूम कर लिया कि इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी और दैट्स हाउ द आर्टिस्ट माइंड वर्क. ये सब चीज़ें सोच के हमें रुकना नहीं है. अगर हमें लग भी रहा है कि वो अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी है, देन इट्स अ क्लियर बिग साइन, गिव देम अटेंशन, टॉक टू देम.
2: मैम डू यू थिंक लाइक सोशल मीडिया रीच आउट टू यू फर्स्ट, वॉट एवर लाइक आपका जो भी थॉट्स या फिर फीलिंग्स आपके जो चल रहे हैं, ना सिर्फ थॉट्स, सबसे पहले जो आपके पास रीच आउट करता है वो है सोशल मीडिया. बिकॉज जो भी आपका फीड रहता है एंड वो टोटली वर्क करता है आपके मेंटल स्टेट के ऊपर. लाइक इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू ओपन द सोशल मीडिया यू सी देन लाइक
1: ओके नाउ अबाउट एल्गोरिथम. आप मीडिया के स्टूडेंट्स हो, आप मुझसे ज्यादा जानते हो यहाँ पे, तो फिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डू यू थिंक अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जहाँ पे फोन जो है पढ़ रहा है हमारे ड्रीम्स?
2: आई डू थिंक

0: आई है. आपको उसी चीज पे कॉन्टेंट बार बार दिखाया जाएगा और जब कॉन्स्टेंटली उसी चीज पे वो एक्सपोजर आ रहा है तो अनकॉन्शियसली जब आप फिर आप सोओगे तो आपको वो ड्रीम में भी आएगा. इट इज ट्रू दैट कॉन्स्टेंटली आपका फोन भी आपको रिमाइंडर दे रहा है कितनी सारी चीज के. एंड सुसाइड प्रिवेंशन के अराउंड जितना कॉन्टेंट है ऑनलाइन उतना ही लाइक इट इज शॉकिंग एंड बट इट इज सो रियल कि सुसाइड के अराउंड भी ऐसा कंटेंट है जो प्रमोट कर रहा है सुसाइड. मतलब आई रिमेंबर सीइंग अ पोस्ट दैट टॉक्स अबाउट कि पीपल हैव सो मेनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट यू बट फॉर दैट यू नीड टू एंड योर लाइफ.
1: Yeah, that's my point. Like, social media presents both positive and negative
0: perspective. Yeah, the extremes are there, right? So, अगर आप social media handle कर रहे हो या manage कर रहे हो, media को represent कर रहे हो, तो it is very important that you be sensitive and responsible while you are representing it. Now, media जैसे काफी help किया है media ने to give a platform जहाँ पे लोग openly discuss कर पा रहे हैं या educational content around mental health consume कर पा रहे हैं. काफ़ी सारे psychologist हैं, psychiatrist हैं जो content बना रहे हैं actively. But on the other hand उस same algorithm में, उस same media में हमारे पास extreme content है जहाँ पे जो क्योंकि अब psychological words काफ़ी available है. अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने normally depression a word use नहीं किया, आपने थोड़ा hesitate किया वहाँ पर. So we need such like a responsible citizen if you are on media, because if my students are like listening to me, they know ki maine kitni baar unko bola hai do not casually use these words, their real mental health condition, do not use it in your bio that I'm a psychotic person, yeah, like do not make fun of these terms.
2: Yes.
0: Do not make it cool ki autistic something something bio mein likha hoga. So ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशंस एज अ कंडीशन. हम किसी दूसरे फिजिकल कंडीशन को इस तरह से बायो में लिख के मजाक नहीं उड़ाते. तो दिस वर्ड्स का यूज करना इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे. इट इज सॉर्ट ऑफ डिसमिसिंग द एक्चुअल वैल्यू और सॉर्ट ऑफ मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू इट, टॉक अबाउट इट ओपनली, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये तो मजाक की तरह लिया जा रहा है. So there are two extremes that we need to keep in mind, and as a professional media representative we need to be mindful of how we are presenting the content.
1: Like ma'am, jab hum media ke around revolve kar hi rahe, so do you also think karke jo PR works hote hain like Instagram pe comment sections hote hain, that also like affect the audience? The person, koi ek particular person ko wo cheez affect karti hai, like comments. कमेंट्स हो गए और रिस्पॉन्स हो गए.
0: राइट राइट. एक रील रील पे किसी ने अगर समझो खुद का ही कोई फोटो पोस्ट किया हो, लेकिन इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर देम, बट देन समवन विल कॉल इट क्रिंज. कोई बोलेगा कि ये कैसा दिखावा कर रहे हैं या दिस इज सो क्रिंज. सो या पीपल आर आउट देयर टू मेक कमेंट्स जहाँ पे दे विल कॉन्स्टेंटली कंपेयर यू नो मैटर वॉट यू पोस्ट, दे विल criticize you. So yeah, that also that impacts a lot. Uska bhi kaafi zyada farak padta hai.
2: Referring to this, I remember one of the interview kind of Richa Chadda tha, jahan pe wo interview ke time pe ek question aata hai uske paas ki does it impact aapke comment section mein jo ye negative comments aate hain, does that impacts you? So she comment on that ki दिल्ली में बैठ के चिंटू मेरे बारे में क्या बोलता है, व्हाई डज इट इंपैक्ट मी. सो दैट इज अ पॉजिटिवली शी हैज टेकन
0: दैट. अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन. रिचा चड्ढा मे बी हैड दैट रिसोर्सेज अराउंड देम और मीडिया पीपल अराउंड देम हु वर देयर टू एजुकेट देम कि ये पीआर टैक्टिक्स है या दे आर जस्ट रैंडम बुलीज, बट नॉट एवरीवन इज इक्विप्ड विद दैट काइंड ऑफ सपोर्ट अराउंड देम. Maybe someone is sitting in some rural area because now internet is everywhere. Screen touch, like good quality mobile phone is everywhere. So they are simply presenting everything and they do not know that these are simply chatbots who are doing things like only to bully someone. So they don't understand and wahan pe unko again depends on person to person and the kind of support that they have, their own coping mechanism, how they deal with situations like this.
3: With this related to one thing, I want to share one small experience. When we were doing, so Smita and me, we were in same degree college. We did our same bachelor's together in psychology, and we had this one professor. During our lectures, she was explaining something, and this particular one thing that she mentioned that time, which influenced me, and that I still use it. And I feel like if you are surrounded by such kind of people and you have such kind of awareness, it can help you to, you know, personally. And it was that she told me, never give a remote of your life to someone else to make you feel a certain way. And that I still use, that why will I let anyone else make me feel upset or happy or whatever I'm feeling right now. I have the control of myself right now. Whatever I'm feeling, whatever I'm saying, whatever I'm thinking, I have the control over my body, my thoughts and everything. I am not going to let anyone else make me or affect me about anything. Talking about this Instagram post, if someone is texting me, if I have that strong mindset, depends from person to person. If I have that strong mindset, it will not affect me. But if someone, if there's someone jinko ye choti choti baaton ka bahut farak padta hai, bahut bura lagta hai ki wo kya bolega, ye kya bolegi, usne mere bare mein kya socha, maine ye post dala to kya sabko acha lagega, aur us pe agar koi comment kare aise negative, to us insaan ko bahut farak padega. So it is very important ki you need to have like little that kind of surrounding, little awareness, little strong mindset, to, you know, have that kind of energy ki haan theek hai ab koi kuch bhi bole mujhe is cheez ka farak nahi padega, I am going to do my best in life.
0: Thank you for sharing that, Anshul. Actually, that sort of is, that is making me feel so grateful that we came from a background jahan pe hamare aas pass log the to remind us ki see that help is available, yeah, you can take care of these things. That's a privilege that still India mein bahut sare logon ke paas nahi hai, that the privilege of having people like our professors who are there to tell you that hey, I'm here to support you. Instead, like again maine jaise kaha ki kafi collective responsibility hai, to school ko bhi kaam karna hai, teachers ko bhi I feel ki training leni chahiye ki tum kaise हम कैसे एक माहौल क्रिएट कर पाए जहाँ पे बच्चा को ये ना फील हो क्लासरूम में आके कि मैं तो फेलियर ही हूँ. क्लास में जो रह के फेलियर फील हो रहा है, घर पे रह के फेलियर फील हो रहा है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ बच्चों के साथ, हम एक्टिवली सच में सब जगह ट्रेनिंग कर ही रहे हैं और बच्चे एक्टिवली कंज्यूम कर ही रहे हैं कॉन्टेंट अराउंड मेंटल हेल्थ, बट वी नीड टू वर्क विद अडल्ट एज वेल, विद टीचर्स, विद पेरेंट्स, जहाँ पे वी ऑल्सो ट्रेन दें कि कैसे हम वो क्रिएट कर पाए सिचुएशन, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग भी इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी गो अहेड एंड गिव देम दैट. नाउ दिस विल अगेन मोटिवेट मी टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑनलाइन. थोड़े टाइम पहले ही मैं बात कर रही थी कि हो नहीं पाता है मुझे कैमरे के सामने, पोस्ट नहीं कर पाती हूँ या टाइम नहीं मिलता है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम मीडिया को जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया में राइट रिप्रेजेंटेशन करने का काम भी फिर कौन करेगा? इट इज अप टू पीपल लाइक अस हू हैव राइट नॉलेज.
3: वन लास्ट क्वेश्चन, सो बीइंग अ प्रोफेशनल, व्हाट इज समथिंग दैट यू वांट टू शेयर आउट देयर, एनीथिंग दैट इट कैन बी पर्सनल और एनीथिंग दैट एवरीवन शुड नो दैट anything about suicide prevention?
2: And also adding to that question, I would add ki parents is pe kaise kaam kar sakte mainly, because bachcha parents ke sath rehta hai, wo bond create karna bahut important hai. Teachers rehte hain kuch ghanton ke liye hote hain, even that is important, but at the same time I feel, my personal opinion, that parents should actually be educated about the mental health.
0: Yes. पहले तो parents को accept करनी पड़ेगी चीज़ें कि real problems हैं, और काफ़ी problems ऐसी हैं जो बच्चा आपके साथ comfortable नहीं हो पा रहा है जो बोलने में, which is okay. We need to accept it कि आपके साथ comfortable नहीं है. As a parent, ये आपकी responsibility है कि आप अपने बच्चे को ये बोलो कि no matter what, I'm here for you. फिर अगर बच्चा अगर आप ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर्स दे रहे हो बच्चे बच्चे को, तो हो सकता है कि वो पर्सनल ज़्यादा चीज़ें या डे टू डे चीज़ें आके ना भी शेयर करे, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जहाँ पे बच्चा जेन्युइनली नीड्स हेल्प, उसको उस टाइम पे याद आएगा कि माय पेरेंट्स सेड टोल्ड मी दैट नो मैटर व्हाट आई एम देयर विथ यू. सो दिस कॉन्स्टेंट रिमाइंडर शुड बी देयर. एंड सिर्फ बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आके आपके साथ कम्युनिकेट करे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप भी कम्युनिकेट करो. मैंने पहले मॉडलिंग के बारे में बोला था कि बच्चे को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है किसी बड़े को उसके बारे में बात करते हुए. तो आप भी आके अपने अगर आप अपने दिन के बारे में शेयर करो, अगर ऐसा है कि कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ हुई है या कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं जो आप बोलने में थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है बच्चे के साथ. फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है पीरियड्स के बारे में बात करके. एज अ फादर और अ डॉटर या एज अ मदर और अ डॉटर फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ विस्परिंग मेक अ क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप ओपनली उसके बारे में बात कर रहे हो. इससे क्या होगा, अगर आप डिस्कम्फर्ट के साथ भी बात करोगे ना तो बच्चा विल पिकअप कि मेरे पेरेंट्स ने इतने डिस्कम्फर्ट के बाद भी, इतना हिचकिचाने के बाद भी ट्रस्ट किया और ये डिस्कशन उन्होंने किया मेरे साथ. तो मैं भी फिर एज अ चाइल्ड सीखूंगी कि मुझे भी कितना मुश्किल लग रहा है, बट आई कैन ट्रस्ट देम एंड आई कैन ट्राई. सो दैट इज वन. एंड सेकेंड फॉर लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे क्या बोलना है, कि अगर मैं अभी बोलूँ कि यू आर नॉट अलोन, ये काफ़ी ज़्यादा आयरनी हो जाएगी बिकॉज यू जेन्युइनली आर फीलिंग अलोन. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो पेन, वो आपको कमज़ोर नहीं बना रहा है. दैट डज नॉट मीन कि आप कमज़ोर व्यक्ति हो क्योंकि आप वो फील कर रहे हो. नो, द रियलिटी इज़ कि आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो वो पेन के साथ कोप करने के लिए शायद इनफ रिसोर्सेज आपको नहीं दिख रहा है. सिर्फ ये एक ही तरीका आपको दिख रहा है, दैट इज़ टू एंड योर लाइफ. बट ट्रस्ट मी, रिसोर्सेज है. वी डोंट नीड टू आंसर एवरी थिंग ऑल टुगेदर, हमको सब चीज़ का आज ही आंसर नहीं चाहिए. ये एक पॉडकास्ट इज नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन कि इसके बाद से सब ठीक हो जाएगा. नहीं, वी नीड जस्ट वन मोर नाइट, वन मोर डे, जहाँ पे वी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड दिस विल हेल्प अस लुक एट द रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू अस. सो द फर्स्ट थिंग इफ आई वुड वॉन्ट टू वॉन्ट माई ऑडियंस या एनी वन हु इज हैविंग सुसाइडल आइडिएशन इज जस्ट टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड टॉक टू समवन. Talk to anyone you feel comfortable with, your class teacher, your counselor, your friend, या any trusted adult that you have around you. And if वो भी नहीं आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझ पाएगा, then I've also mentioned few helpline numbers that you can reach out. जैसे टेलीमानस या आई कॉल, तो आप इन पर भी रीच आउट कर सकते हो. अगर आप डिस्क्रिप्शन पर if you can mention these numbers, that would be really helpful.
2: So that was very insightful content, and I think इस content से लेकर काफ़ी बच्चों को help होगी, काफ़ी adults लोगों को भी help होगी, and also I would highlight कि parents को भी help होगी to understand their child and understand their mental health. And बाकी जो भी सुन रहा है, mental health कितना important है ये आपको पता चल जाएगा इस episode. So you were listening Acharya 90 FM, your own radio. हमारे साथ थे मिस इशिता मिश्रा, हमारे साथ थे मिस स्मिता मिश्रा एंड आचल सिंह. साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू सो मच.

0: हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका क से कवि। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपनी कवि की जर्नी को इस क से कवि के माध्यम से सुनाया, हमें बताया, तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने एक और मोती आ गए हैं। नाम है मोनिश वारसी। मोनिश जी अपने उम्र से बहुत ज्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज लहज, सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें करें तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज़्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद हम, जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिश जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिश जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?
1: लिखना एज इन एकदम से लिखता तो मैं शुरू से ही था। कभी नज़्में लिख दी, कभी एक लाइन लिख दिया, कभी कोई वर्ड लिख दिया। जैसे जो सीड है वो तो हमेशा पड़ा ही रहता है ना इंसान के अंदर।
0: करेक्ट।
1: जिस चीज का है उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने प्रॉपर लिखना 2019 में शुरू किया। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जिसने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया कि लिखा जाए। और हर चीज के लिए कहते नहीं एक स्पार्क की जरूरत होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए। तो वो स्पार्क मेरी जिंदगी में आया किसी इंसान के तौर पर और मैं लिखना चालू किया। फिर रुका नहीं, कलम लिखते गया।
0: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने आपको किसी और मोड पर या किसी और मोड को चूज ना करते हुए सिर्फ लिखने की ओर मोड़ा?
1: लोग शब्द हम कलम का सहारा लेते ही इसीलिए कि उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता।
0: करेक्ट।
1: कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो आदमी हमें मिला है, वो इंसान हमें मिला तो हम कैसा फील कर रहे हैं।
0: करेक्ट।
1: उस चीज को बायकॉट करने के लिए या बाईपास करने के लिए हम कलम उठाते हैं।
0: हाँ।
1: शायरों में यही होता है कि हम जो फील कर रहे होते हैं वो नहीं बता सकते। तो जो पॉसिबल चीज है, जो जो एक उस फीलिंग को टच कर सकती है, उस चीज को आपको, ये बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप भी लोगों को शायद ना पता, मुझे मालूम है कि आप भी लिखते हैं। तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे इजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज जा सकती है वो शेरो शायरी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज एक्सप्लोर करने में टाइम लगे या हो सकता है मैं भी कभी ना जाना, मगर हाँ जितना हो सकता है उतना लिखते हैं। तो निकलते गए। और आपको मालूम है कि प्रेम बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज है, तो उसकी कोई
0: तुलना नहीं है।
1: हाँ, तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो हम कर पाते हैं बस लिख देते हैं कुछ।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि कभी एक कविता लिख दी, कभी एक पैराग्राफ लिख दिया या कभी एक शब्द लिख दिया, तो कभी कोई एक ऐसा शब्द लिखा है जो आज तक वो शब्द ही रहा है, मतलब फिर उसके आगे कभी कुछ लिखा ही नहीं?
1: मीरा मैंने लिखा था एक मीरा।
0: हाँ।
1: अब वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही पसंद है, जो उनकी मतलब डिवोशन है, जो उनका पूरा आत्मसमर्पण है, जो वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है, बहुत ही ज्यादा। एक होता है कि किसी को पसंद करना, एक होता है किसी को हर दर्जे तक पसंद करना। तो मैंने एक ही सबसे पहला ही मैंने लिखा था मीरा। एक शब्द मेरी डायरी में अभी तक लिखा पड़ा हुआ मीरा। तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही याद आ रहा है कि एक ही शब्द से अगर काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है, उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं मीरा। जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ गए हैं।
0: करेक्ट।
1: अगर डायमेंशन शायद इश्क का ही है।
0: और वो शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा।
1: वो तो भाई आशिक के लिए आशिक की बात है।
0: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने वो एक वर्ड लिख कर छोड़ दिया, फिर उस शख्स को जानने की आपने कोशिश की कि क्या था क्या नहीं, क्या पढ़ा फिर मीरा के बारे में?
1: मीरा के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ इतना ये इस चीज को मैं जानता हूँ कि उनकी जो उनका जो इश्क है वो जिस घर से आती थी उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो कितना किस दर्जे तक गया ये मुझे मालूम है, खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को ये मुझे मालूम है, और काशी के लिए जाना इतना काफी मुझे अच्छा लगा ये चीज, और वो मुझे हमेशा से पसंद है। जब मैंने क्लास 8 में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तभी से वो मेरे मन को मिला।
0: कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान मेरे प्रीतम मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ वो बस खाली इस चीज को जान ले। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर गई है, मतलब प्रेम, हाँ प्रेम प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है, मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दे, जब तक आप कुछ भेंट ना दे दे, कुछ दे ना दे, इसको लोग प्यार समझते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे?
1: मैंने इसी को मद्देनजर, मतलब इसी को नजर में रखते हुए एक शेर लिखा था कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
0: तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
1: अगर ये बात है असरार तो तेरा शहर कभी महफूज है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मैंने मीरा को नजर में रखे ये शेर लिखा था मैंने कि जब सेल्फलेस चीजें हैं ये किसी भी सेंचुरी की बात नहीं, ये आज से 1000 साल भी कोई इश्क करेगा तो इसी फेज में, वो दरवाजा सेम है, इश्क का दरवाजा उतना ही बड़ा है उतना ही सेम है, उसी जगह पर वो शिफ्ट नहीं होता है, शिफ्ट होता है वो वहीं पर, जो भी आदमी इश्क करेगा चाहे वो मीरा हो चाहे सतीर हो चाहे मनीष हो उसको जाना उसी दरवाजे से तो वो फील कर सकता है। तो मैंने ये लिखा मीरा जी को
0: मद्देनजर रखते हुए कि
1: किसी चीज की जरूरत नहीं।
0: मैं भी मीरा इस कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मीरा है, रब की भी चाहत मीरा है, आशिक ने लिखा हर प्रेम का खत मीरा है, सब पंछी तारे मीरा है, सब पंछी सारे मीरा है, गगन में तारे मीरा है, जो जीत गए वो कृष्ण हुए, जो हार गए वो मीरा है। लेकिन इश्क में यही है जो हार जाता है वही जीत जाता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन, एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे प्रेम को छोड़कर?
1: मैं कहूंगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है, जैसे आपने कहा कि सब हार गए वो
0: जो जीत गए वो कृष्ण हुए जो हार गए वो मेरे,
1: इसी मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूं लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही थी हार गए,
0: करेक्ट,
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया, बोले तू कुछ है ही नहीं,
0: करेक्ट,
1: तितर बितर,
0: करेक्ट,
1: कोई मतलब नहीं है तेरा, क्या है मेरा, बोनस क्या है, शब्द क्या है, कुछ नहीं, तो ये हार वो जीत से बेहतर है।
0: सही बात है, सही,
1: तो ये हार बहुत ही मतलब बहुत ही पवित्र है ये हार कि किसी के लिए हम हार जाए, प्रेम उसी में है जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो हारने के बाद भी, तो मेरा वो सेटिस्फेक्शन है जब कृष्ण के दर्शन हो गए तो क्या है?
0: वही एक दर्शन में सारी दुनिया छुपी है, देखा जाए तो सारी दुनिया उसी एक दर्शन में। तो मेरा एक सवाल था कि कभी आपने ये सोचा कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा भी होगा, एक डायमेंशन ऐसा भी होगा जहां शायद कृष्ण मीरा के होंगे, कभी ऐसा सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा होगा?
1: नहीं होगा, हम और आप किसी न किसी दौर में किसी न किसी जमाने में, अभी दुनिया में इतनी नफरतें हैं, हम और आप बैठे बात कर रहे हैं और इस बारे में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी को कि कोई दो लोग बैठ के आज के दौर में मीरा की बात करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा संभव है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट
0: है,
1: किसी न किसी वर्ल्ड में तो
0: किसी
1: वर्ल्ड में तो कृष्ण भी मीरा के आशिक होंगे।
0: हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
1: अब उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है।
0: वो तो जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब पॉसिबल
1: है। इश्क का रियल शब्द भाई ऐसा है कि वहां पे वो खुद ही मल्टीवर्स है, वो उसमें कभी आदमी बहुत दुख से भर जाता है, कभी बहुत सुख से भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर पल ऐसे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, चलते रहता है। लोगों को लगेगा कि आप, अरे ये तो महबूब की पहले तो तारीफ कर रहा
0: था, अभी बुराई कर रहा है। हाँ,
1: तो ये तो चलते रहेगा, ये मतलब ऐसी चीज है कि ये जैसे कुछ भी हो, कुछ अब जैसे मैंने लिखा कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है, फिर मैंने एक चीज और लिखी, अब तो मुड़ के देखने में भी तकलीफ है तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दूं, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता क्या करूं क्या रहने दूं।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, फिर से मुकर्रर इरशाद, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह।
1: अब तो मुड़ के देखने में भी
0: तकलीफ है
1: तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दूं, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता कि क्या करूं क्या रहने दूं।
0: वाह वाह वाह,
1: ये भी एक रेंज है। मैं ये कहता हूँ कि इश्क कोई किसी पेडेस्टल पे हमें तौलना नहीं,
0: आशिक
1: कभी ऊपर भी रहेगा
0: कभी नीचे भी रहेगा,
1: वो मिजाज की बात है। ऐसे ऐसे अशआर आदमी लिख देते हैं, लगेगा कि ये तो नफरत करता है, मगर महबूब से कोई नफरत नहीं कर सकता,
0: महबूब बनाई है प्यार
1: को गाली नहीं दे
0: सकता,
1: आशिक होगा तो किसी भी हाल में रखे वो ठीक है, फिर वो वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो वहाँ पे जो सरेंडर जो लेवल है वो अलग होता है। इसलिए मैंने मीरा से ही आप पहले कबूल कराया भी,
0: लेकिन यही एक चीज है, आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं, कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है, या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूँ, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो मैं देखता हूँ, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
1: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला होता है और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि उसको, उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इश्क का है
0: नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली
1: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जो बात करते हैं कि शायर जितने भी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा होता है जो गले से नहीं उतरता किसी और के। तो ये जो आप कह रहे हैं, तो मैं मतलब इसका जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि एक तरफा जो होता है यही सबसे, मुझे सबसे मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो आदमी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं जरूरत तेरी, फिर जस्टिफाई कई सारी चीजें हो जाती है, कई सारी चीजें कि भाई तेरे हंसने से भी अगर मुझे तकलीफ थी, तेरे रोने से भी तकलीफ थी, या तेरे ये बात कहने से मुझे तकलीफ थी, चल वो भी हटा दिए, मैं अकेले कमरे में पड़ा हूँ तेरे से इश्क कर रहा हूँ।
0: वाह,
1: और वो इश्क पहुंचता है, मतलब हम सुनते आते हैं कि अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो सामने वाला भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो भी आपको याद कर रहा हो, तो ऐसे ही आदमी कर लेता है, इश्क कर लेता है, और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर आज पर जो है, आज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मतलब जिस्मों तक ही सीमित है, वो चीज थोड़ा मुझे अटपटा लगता है कि पता नहीं।
0: जैसे अभी आपने कहा कि चलो ये हटा दिया, वो हटा दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, सब
1: फिर
0: कुछ
1: भी फिर भी।
0: ऐसे ही एक शायर थे, मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया। जॉन एलिया ने खुद को इतना तबाह कर लिया कि पढ़ते हैं तो पता चलता है उनको, या कुछ शायरों से सुना भी है, कि कई सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने, ना किसी मुशायरे में जाते थे, ना किसी से मिलते थे, ना कुछ मिलना जुलना होता था। फिर उनके दोस्त थे सलीम जाफरी, वो आए, कमरा खुला, देखे तो जॉन साहब के बाल बहुत बड़े, लंबे लंबे, दांत गंदे हो चुके, बदन से बदबू आ रही है, इतना खुद को तबाह कर लिया। तो शायर इस वक्त क्या सोचता होगा, मतलब खुद को जब बंद कर लेता है सारी दुनिया से, सब मतलब रिश्ते नाते तोड़ दिया, नहीं मुझे दुनिया ही नहीं देखनी, और वो आके खाली कमरा बंद कर दिए है, 8-10 किताबें है, 4 दीवार है, जिसको 24 घंटा देख रहा है आदमी।
1: जो साथ में इसका जवाब खुद ही दिया है, एक अपने शेर में दिया इसका जवाब, कि कहते हैं क्या कहा, मुझसे मिलने आए क्या कहा, मुझसे मिलने आए हो, बैठो बुला कर
0: लाता हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो ये उन्होंने खुद कह दिया है, ये अब इसको मैं इलाबोरेट करूं या कोई भी दुनिया का आदमी इलाबोरेट करेगा बहुत ही ज्यादा समय जाएगा इसमें, कि एक शख्स है जो अपने आप को इस हद तक तबाह कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ महबूब है उसके।
0: वही उनका शेर है ना, मैंने खुद को इतना तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।
1: और मलाल इसीलिए इसको आदमी दूसरे, मतलब आज के लोग शायद दूसरी तरीके से समझे, मगर मेरा ग्लास सिर्फ इश्क है मेरा, मैं इश्क के चश्मे से ही चीजों को देखता हूँ। तो जो मिर्जा साहब हो या कोई भी हो, तो ये जो इन्होंने कहा है कि क्या कहा, मुझसे मिलने आया बैठो बुला के लाता, तो ये वही बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं, खत्म। जैसे हम लोग एक वाक्य, एक थोड़ा फोकलोर हम लोग सुनते हैं कि लैला से मिलने मजनू गए, तो मजनू ने दरवाजा खटखटाया, तो लैला ने पूछा कौन, तो बोले कैस, तो बोले जा। फिर दोबारा आए कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर लैला ने पूछा कि कौन, बोले कैस, बोले वापस जाओ। फिर तीसरी बार जब आए वो, तो पूछे कौन, तो बोले पता नहीं। तब लैला ने दरवाजा खोला और गले मिली, कि ये मैं ये चाह रही थी, तू कौन, मैं कौन हूँ, दो रूहों का मिलन है, दो मतलब आत्माओं का मिलन, ये हल्की बात नहीं, ये हमें मतलब हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इश्क ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो चाहे हिंदू कल्चर हो कुछ भी हो, हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका वो। तो एक हो जाना, मीरा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं बचा। एक वाक्य और बताता हूँ आपको कि एक हो जाना क्या क्या होता है। कृष्ण भगवान जा रहे थे जंग पे महाभारत से लड़ने की, ये बात है। तो राधा ने कहा कि कम से कम आप मुझे अपना लीजिए, पता नहीं क्या हो जाए जंग में, मैंने ऐसा सुना है और मेरे टीचर को बताया करते थे। तो कृष्ण ने कहा आप अपनी आँख बंद करिए राधा से, और कृष्ण पलटे और बोले कि अब खोलो। तो राधा ने देखा कि सामने एक और राधा
0: खड़ी है। हाँ,
1: किससे करूं, तू ही तो है, मैं ही तो हूँ। तो इस लेवल का अगर यूनियन है, जो कि मतलब अभी तो
0: इसके बारे में सोचना भी
1: उम्मीद नहीं कर सकते, और जो कि गलत नहीं है, जिसको जितना देखो, मैंने बहुत ही अच्छे एक इंसान सुना था कि जिसका जितनी फोकस है, जितनी लाइट है, उसको उतना ही दिखेगा।
0: करेक्ट।
1: एक टॉर्च का फोकस अगर 10 mm का है तो उसके 10 mm का एरिया ही दिखेगा। एक LED का फोकस अगर 1 km तक है तो उसको 1 किलोमीटर का ही रेडियस उसको दिखेगा। तो इसमें उनकी गलती नहीं, उनको बताया दूसरे तरीके से गया, उनको समझाया दूसरे तरीके से गया।
0: करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है, और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा हो, है ना। तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था। तो चलो, हम खुश नसीब है कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं, और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की, पूरी भी हुई, फिर उसे काट दिया, फिर उसे लिखा, फिर काट दिया, ऐसा कितने बार हुआ है?
1: मैं मतलब लिख के काटने वाली तो बात जो है बहुत सही है।
0: हाँ।
1: आदमी कभी कभी, मैं जैसे मैं लखनऊ से हूँ, तो उर्दू थोड़ी अच्छी ग्रिप है उर्दू पे, मगर उतनी भी अच्छी नहीं। तो कम से कम सैकड़ों बार ये होता है कि लाइन लिखे हो, जो फील कर रहे थे वो पोर्ट्रे नहीं कर पाए पेज पे, काट दिए। फिर एक दिन बैठे कि यार वो लिख देता हूँ, काट दिए। कई बार हुआ, कम से कम 100-200 शेर तो आधे तो एक एक लाइन के पड़े,
0: सिर्फ एक मिसरा लिखा है। हाँ। उला लिखा, सानी नहीं मिला, सानी लिख दिया, उला नहीं मिला।
1: क्योंकि मैं मतलब यही सोच के, ये नहीं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, मेरे पास वाकई में मतलब लफ्ज नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो क्या जस्टिफाई हो पाएंगे। तो मैं बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी चीज लिखता हूँ, ऐसे मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूं लिखने के लिए। तो बहुत बार हुआ।
0: राइटर्स ब्लॉक ऐसा कितना टाइम चलता है, मतलब बहुत महीने हो गए, दिन गुजर गए, साल हो गया, कुछ लिखाएंगे, ऐसा हुआ है?
1: बहुत बार होता है, बहुत ऐसा होता है जब, जैसे और इसमें किसी की गलती नहीं है कि इसमें मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, किसी ने नलका रोक दिया, फिर अगर तुम कॉन्शियस हो नलका खोल दिया पानी गिरेगा, तो कुछ ऐसा ही है। मतलब मैं इसको ऐसा एकदम पर्टिकुलरली वर्ड में शायद मैं डिफाइन कर पाऊंगा। आपका सवाल बहुत प्यारा है, मगर शायद ऐसे ही है कुछ कि ब्लॉक तो चलता है। मेरा तो ऐसा है कि किसी का भी है 15-15, 20-20 दिन कुछ नहीं लिखता।
0: हाँ, दो, तीन, छह महीने मैंने नहीं लिखा।
1: तो ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ होता है। ये इसलिए नहीं होता कि हमारा कुछ कंटेंट खत्म हो गया, हम मतलब भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता है। और लिखना तभी मजा आता है कि भाई वो जब दिल से निकले चीजें, तो वो शूटिंग भी दिल से,
0: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ नाजिल हो रहा हो, जब आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया, और आप बैठे आपने यार ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, और हो गई पूरी कविता हो गई एक मिनट के भीतर पूरी।
1: हाँ,
0: फिर करेक्शन, फिर सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करना। लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं। मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने आपको। हाँ, कि आप परेशानी तो पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ होया है तो पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है?
1: ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होता है। जैसे एक जैसे जिस्म की एक खुराक है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे जो आपका इश्क है, जो आपका आपकी जो रूह है, उसकी भी एक गिजा है। तो आप उसे वो बस पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से, जब वो भूख लगती है कि यार आज इश्क बहुत मजा रहा है, तो वो पढ़ लिए, या वो लिख दिए कुछ ऐसा, लिख दिए कि पढ़ लिए, तो होता है ऐसा। और वो चीज इतनी प्राइवेट होती है कि कुछ शेयर होते हैं,
0: कुछ शेयर बहुत, हाँ, वो मतलब आप सुना ही नहीं सकते हो किसी को,
1: तो वो होते हैं। वो फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूटती हैं, कई चीजें भी टूटती हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वहीं रहे ज्यादा बेहतर।
0: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई आती है, क्या लिख दिया मैंने,
1: एक शेयर लिखा था और शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे, मगर मैं पढ़ दूंगा। आपको मालूम है वो वाला शेर मैंने आपको सुनाया था,
0: इरशाद।
1: कई चराग है रोशन, कई चराग है
0: रोशन,
1: बस उनकी जस्तजु से है इसरार, तेरी ही जात थी अब तक जो दरख्शां है।
0: वाह वाह वाह,
1: तेरी ही जात थी अब तक। मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दूं लोगों को, ताकि कई चराग है रोशन तेरी जस्तजू से, मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस से कई लोग मुनव्वर हो गए, कई लोग उनकी प्रेजेंस से एकदम नहा लिए इश्क से, हर चीज से, बहुत खुशी से, हर चीज से, मगर असरार मेरा पेन नेम है सो, तेरे में ही वो कमी थी जो तू कुछ नहीं फायदा उठा पाया उनकी उनकी प्रेजेंस से, उनके इश्क से, तो वो उतना लबरेज, उतना मतलब डूब नहीं पाया उस चीज में जितना तुझे डूबना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग सिर्फ उनकी परछाई से,
0: यही मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि समझो एक नदी बह रही है, लेकिन सब हाथ दूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बस ऐसे बैठ के ना नदी को देखते हैं,
1: नदी की धारा देख रहा
0: हूँ, बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए।
1: बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है।
0: हाँ, तो मैं आप जब ये शेयर

0: चाहिए था, फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं उस वक्त जो मैं सोच रहा था वो बहुत ही प्योर था, अब शायद थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात है कि नहीं मुझे इससे मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे जानना चाहिए था, मगर अब
1: तो लेकिन यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है, एक आशिक जो परेशान कि यार मैं क्या करूं,
0: आंख से आंख मिल गई उनको, बस बस
1: एक बार वो देख ले, उसने पूछा बस, उसने ही पूछा,
0: जैसे मैंने इस पे भी एक शेर लिखा था, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, जब से देखी हमने होश में,
1: हां वाह वाह वाह,
0: जब से देखा हमने होश में आया,
1: मैंने भी एक शेर लिखा था, मैं ऐसा ऐसा बैठा हुआ था तो मुझे मेरे गुरुजी ने देखा, उस टाइम पे देखे और मुस्कुराया, तो मैंने देखा और देख के बोला कि ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ, ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ है, खुदा का देखना मेरी तरफ। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखने लगे, मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है,
0: इश्क तो प्योरेस्ट फॉर्म में,
1: हाँ तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर, मैं बोला हाँ, वो मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ क्या क्या हो गया, मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार ऊपर वाला देख ले उसे, है ना,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो वही तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें कि आपने लिखा रात में, उसको बहुत मतलब पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया,
0: खराब हो गया।
1: तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं, और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को, और मतलब सिर्फ तारीफें लूटनी है, और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दिया।
0: ऐसा होता है जब,
1: हाँ,
0: और इसलिए भी होता है क्योंकि मैं मेरे गुरु जी बताया करते थे कि इश्क में इंसान इवॉल्व करता है, पर सेकंड उसकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, जो उसके जो इमिट हो रही है उसकी बॉडी से, उसकी फीलिंग से, उसके इमोशन से, वो चेंज होते हैं। अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि इश्क जो है, हमें लगता है कि इश्क कंट्रोल देता है, नहीं, इश्क फ्रीडम देता है। इश्क अब वो इश्क है ही नहीं जो एक दूसरे को ग्रो ना करवा पाए, वो इश्क नहीं कि जो एक दूसरे को कब्जा रखे, एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ये करे, नहीं, इश्क जिस चीज में आप बेटर हैं आप ग्रो करें, जिस चीज में मैं बेटर हूँ मैं ग्रो करूँ, ये प्रॉपर मेरे हिसाब से इश्क की डेफिनेशन नहीं है। तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं, रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं, तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया, नहीं, वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे की जो बहुत ही प्यारा है आज भी, जो तुम्हारी स्टेज पे जो तुम कल
1: था ना, करेक्ट करेक्ट,
0: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा,
1: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
0: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा भी है, इश्क का दरवाजा एक ही, उसको सब वहाँ से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे, आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेर लिखा निर्वाणा से पहले, फिर एक किलोमीटर बचा वहाँ पे आपने कुछ शेर लिखा, फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेर आपने लिखा था पहले वो खराब
1: है, नहीं, करेक्ट,
0: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है, आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पास तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को।
1: यही दुनिया को यही तो टटोलना कि दीवार के उस पार क्या है,
0: वो दरवाजे पार हो जाए, इश्क का दरवाजा पार हो जाए।
1: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज्मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब का कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो।
0: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका, कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वाला देखें, जात और बिरादरी वाली, तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब आप अपने पास पहुंचा पाऊं तो इस तरीके से कहूंगा कि समझ लीजिए
1: सब्जी बेचने वाले थे मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब,
0: इनायत शाह कादरी साहब उनके जो गुरु जी थे, और भुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है टॉप मोस्ट कैटेगरी, तो वो थे। तो एक दिन खाना खा रहे थे तो भुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया था, उसके पास क्या रखा है। तो बुल्ले शाह की मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है, अपना ही तो है। तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था, जो उनका सेक्रीफाइस था, जो जो

0: भी था उनका जो जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी, सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गए, तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरुजी की गलियों से, निकलते थे, सब चीज करते थे। यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहां से उनके गुरुजी कभी कदार निकलते थे, तो वहां पे कोठे पे चले गए वो। तो वहां पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा। तो बोले पागल वागल कैसे, ऐसा आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी, आप आलिम में मौलाना, आप नाचेंगे? बोले नहीं, आज मेरा महबूब यहाँ से निकलेगा, मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गया, और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं। इतना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे, जो गुस्ल खाना होता है, जो वॉशरूम होता है, आज आज आज जो जहाँ पे आदमी
1: नहाता
0: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना, पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा। तो उनके गुरुजी बांस लिए, बांबू, और बांबू से पाइप को साफ करने लगे, तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से, पूरा सर फट गया उनका। जब देखे खून आने लगा तो गुरुजी, और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक ही है और कोई, तो तब वो गए और दोबारा देखते हैं कि अरे बुल्ला ये तो तू है। तब उन्होंने उनको गले, ऐसे बहुत सारे वाक्य थे जब उतना वो कुछ वक्फा, कुछ साल वो परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे मनाने के लिए। मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो दो दो वाक्य।
1: हाँ, वो तो उनकी गुरुजी के चौखट पर सर तोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया।
0: आप सोचिए जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मेरी जो है प्रायश्चित, अब प्रायश्चित मेरा पूरा हुआ। वो तो चाहते थे कि मैं मुझे मर, मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊं, बुल्ले शाह भी चाहते थे मैं किसी बहाने मर जाऊं इसी रास्ते में।
1: क्या इस तरह की क्या समर्पण होगा, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई।
0: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में,
1: हाँ,
0: राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण, सब कितने सारे लोग हैं। लक्ष्मण का राम के प्रति
1: प्रेम, समर्पण था, जो प्रेम था,
0: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ कुछ किस लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे हैं।
1: हाँ, मतलब चीजें इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला, मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है कि आजकल के यूथ को ये चीजें, इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जिसे आप चले गए, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक टीस पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया कि मैंने
0: लिखा नहीं, मैंने पैर छुए, मैंने पैर छुए, और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन के अराउंड लोग हैं दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है इस दुनिया में, तो कितनी सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप पे निछावर कर रही है, कर रहा है, या कर रहे हैं, जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही ज्यादा आप आपका सौभाग्य है कि आपको एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाने के लिए हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको चुना, तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये पैर छूने के काम कि ऐ इंसान तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और,
1: मतलब
0: अपना मेरा ध्यान कहीं और। तो ये पैर छूने वाली बात है, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल कर दिया आपने कुछ लिखा।
1: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
0: एक गाना समझ में आता है मुझे, वो आपकी नजरों में समझा गया।
1: हाँ तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
0: इसका धुन कैसे गाने का मैं भूल गया।
1: आपकी नजरों ने समझा
0: प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा।

0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ, बहुत
0: वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आपको गुनगुनाना
1: तो बीच की है कुछ लाइनें, जैसे

0: तेरा मैं तेरा हूँ।
1: क्या मतलब, देखो ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना बिना तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और फिर इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं,
2: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है, लिखने का मन नहीं करना ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है, मतलब कई कई सारी चीजें। नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान का, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती है, ग्रुप से शिकायतें ज्यादा हो जाती है और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ हटाओ, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये है कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब क्या बुराई नहीं कर सकते आप, या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
1: दोनों नहीं कर सकते।
2: अरे तो एक एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना,
1: एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, सही बात,
2: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगे शब्द
1: नहीं। लेकिन एक मोड आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में, तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है, फिर उससे प्यार हो गया यानी वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाया हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर के नजरिए से।
2: एक शायर की नजर जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर तो नहीं है मुझे उतना नहीं है शेर, मगर मेरे सब बच्चे हैं, मैंने लिखा तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
1: का भी भला हो असरार,
2: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
1: वाह वाह,
2: मैंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इश्क में खड़ी कर दी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में। बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर ले मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से, इधर उधर वो एक एक एक एक मंजिला घर है, हमें रहना उसी में,
1: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
2: कभी गुस्सा
1: तो वही मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे,
2: बहुत अच्छी तरीके से।
1: वाह वाह
2: वाह, वही है
1: क्या एक राइटर, मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जैसे एक शायर थे मजाज साहब की जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर उर्दू के प्रोफेसर, उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं, तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे, लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा, वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको और पूरी रात बैठ के शायरी सुनाए, तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं, अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया, थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ, अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको, दिल्ली में एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहां पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कप कपा

0: जाओ एकदम ऐसे कड़क हो जाओ। पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई, शायरी सुनी, और रात के लगभग 2-2.5 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए। वो शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में। ऐसा वक्त आया। तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है? हाँ, ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मरने के बाद भी शायर उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा?
1: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता वो वहां पर नहीं पा सकता। और पाने की जो बात है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है इस, हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता।
0: ओके,
1: वही हमको मिला दिया था ना जब वहां पे दो आत्माएं थी, वहीं मिल लेते, क्या दिक्कत थी। मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क। तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचा ही। मैं एक तरफा इसको अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया, बर्बाद हो गया, मर गया। तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना दे देता है इश्क। जैसे इश्क भी कई कई कैटेगरीज हैं, जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रही नहीं जाती। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए। तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है। और इसी दुनिया में आदमी पा लिए, मीरा ने इस दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले। ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे कहे।
0: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
1: अल्टीमेट गोल जो है वो मैं मतलब एट दी एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में, मतलब हमारे मालिक की बाहों में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बी भाई मोहब्बत से। दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से, मैं कहता हूँ प्यार करिए आप लोगों से, अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें। इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, तब एटम बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग। जब दुनिया बनी, बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे, फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने, फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए,
0: हम बन गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है वो यूनियन का ही एक समग्र स्वरूप है। अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है, हमें मिलना ही है, यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपने करीब वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिला है मालिक। मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, मिलता ही जरूर। वो मालिक बहुत ही बहुत रहम वाला है, वो मिला देता है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुम अगर, मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
0: हाँ, वो तो सही बात है, वो तो सही बात
1: तो
0: है।
1: यही जवाब है मेरा। और
0: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते?
1: यार लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। मेरे सारे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है। मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
0: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है ना,
1: इश्क करता तो कुछ नहीं करता था शायद, फिर इश्क करता और कुछ नहीं करता। मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता, मैं उसमें ज्यादा माहिर हूँ।
0: अच्छा,
1: और सबको मतलब सबको, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने इन्वायरमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार।
0: इश्क करे प्यार करे इसका मतलब यह नहीं जाके आया लगे बोला है, इट जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
1: than anything.
0: Yeah, than anything gets bent towards humanity. Just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive. आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव.
1: मैं यही बताता हूँ कि जब जो हम जो वी हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया शब्बीर भाई. आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है आप उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है. प्यार नहीं तो क्या है ये. मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार. इश्क इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको. मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है. मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर भी खूबसूरत लगता है. मुझे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया, ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा कुछ है नहीं.
0: वाह, बहुत खूबसूरत. इससे अच्छी क्या ही एंड हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसके स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जाम्पल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन और अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी मच लवेबल, दैट योर लव शुड गेट स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, इट शुड नॉट गेट बाउंडेड. ये बाउंड नहीं रहना चाहिए या आप इसको क्लोज फॉर्म में ना रखें. इफ यू हैव समथिंग टू गिव प्लीज गिव इट बैक, आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा फॉर्म में बनके आपके पास ही लौटेगा. लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है. जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते.
1: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें प्यार ऐसी चीज है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे. ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है जनाब,
0: ठहरे हुए पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नए कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष. तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं. मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को. मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा. टाटा बाय बाय.
1: थैंक यू.

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम आंब्याची अमृत फळे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप चावल को अच्छे से धो लीजिए। अब हमें इन चावलों को सुखाना है। इसके लिए कॉटन के एक कपड़े पर इसे फैला कर रखिए। लगभग 2-4 घंटे के बाद इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर इसे मिक्सर में डालकर इसका रवा बनाइए। उसके बाद मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में हमें गरम करना है घी। यहाँ पर मैं 1/4 कटोरी घी को गरम कर रही हूँ। फिर उस गरम घी में हम डालेंगे मिक्सर में बनाया हुआ आंबा मोहर चावल का रवा। लगभग 10 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। तब गैस की फ्लेम को आप लो ही रखिए। ऐसा करने से ये रवा गोल्डन कलर का होगा, नहीं तो वो जल सकता है और किचन में धुआंधार परफॉर्मेंस वाला सीन क्रिएट हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। लगभग 10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और ताजा आमरस। फिर ऐड कीजिए ढेर सारा प्यार। इसे आप अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। फिर बारी आती है शक्कर, केसर और थोड़ी सी सॉल्ट पाउडर की। इसे भी उस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 2-4 मिनट में ये पक जाएगा। फिर इसमें डालिए थोड़ा सा और घी और साथ ही खुशबूदार इलायची पाउडर। इस देसी घी और इलायची पाउडर की खुशबू से आपका घर महक उठेगा। क्या बात! अब इस कढ़ाई पर ढक्कन रखकर लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। जब तक ये पक रहा है हम एक ब्रेक लेते हैं। हमारी आंब्याची अमृत फळे अब फाइनल टच के लिए है तैयार और इसे खाने के लिए हम कैसे करें और इंतजार। तो भाई अब आगे सुनिए। सूजी का हलवा मींस शीरे जैसे ये कढ़ाई वाला मिश्रण दिखने लगे तब आप गैस को कर दीजिए बंद। अब एक बड़ी सी प्लेट में इस मिश्रण को हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले उस प्लेट पर थोड़ा सा घी सब तरफ अच्छे से फैलाइए। फिर कढ़ाई में तैयार मिश्रण को उस घी वाली प्लेट में निकालिए। इस गर्मा गर्म मिश्रण को 1 कटोरी के बेस की मदद से अच्छे से चपटा करके फैला देना है। जब तक ये मिश्रण गर्म है तब ही इस पर खसखस और ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट को फैला दीजिए। बाद में कटोरी के बेस से इसे भी प्रेस कर दीजिए। लगभग 1 घंटे के बाद इस तैयार मिश्रण को छुरी की मदद से स्क्वायर शेप में काटिए। इस प्रकार आंब्याची अमृत फळे अब खाने के लिए है एकदम तैयार। एक सुंदर सी कटोरी में रखकर इस आंब्याची अमृत फळे का भोग आप भगवान को लगाइए। ऐसा करने से खाने की सात्विकता बढ़ जाएगी। अब इसका एक टुकड़ा उठाकर बड़े आनंद से इसका लुफ्त उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस आंब्याची अमृत फळ की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है प्रस्तुत हुआ अमृत। न्यारी सी एक मिठाई, नाम में जिसके अमृत, आमरस और चावल से इसे बखूबी किया प्रस्तुत। आम से बने व्यंजनों की इस शो में भरमार, स्वाद का जायका निभाने आई भारतीय सीमा बनकर कर्णधार। हम खाना खिलाते खिलाते सुनाएंगे कुछ गाने, कभी नए तो कभी भूले हुए फसाने। हमेशा बनी रहे ऑडियंस जी, आपसे हमारी दोस्ती आसानी से भूल जाओ ऐसी नहीं ये हस्ती। भारतीय खाने में छुपे हैं सेहत से जुड़े कुछ राज। अब बारी है अगली रेसिपी की, लेकिन पहले

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे गर्मी के सीजन में एक और फल मार्केट में आता है। इस फल के बीज निकालकर उसे नमक लगाकर धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। ऐसा सुखाने से लाल रंग वाला ये खट्टा फल काले रंग का बन जाता है। इसे मेनली महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इस सूखे हुए फल में नारियल का दूध मिलाकर बनाई जाती है कोकम कड़ी, मींस सोल कड़ी। ये ताजगी भरा व्यंजन है। ये अपने खट्टे मीठे और पाचक गुणों के लिए फेमस है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होने के साथ हल्का मसालेदार भी होता है। इसका रंग हल्का गुलाबी या जामुनी होता है, जो कोकम से नेचुरली आता है। गर्मियों में इसका सेवन करने से हमारे शरीर में ठंडक छा जाती है और हीट स्ट्रोक से बचाने में ये बहुत ही प्रभावी मींस असरदार है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ को फायदा ही मिलता है। मींस अपनी ब्यूटी रेजिम में आप कोकम कड़ी को जरूर शामिल कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। कोकम कड़ी को सिंपल चावल के साथ खाना मतलब कंफर्ट फूड खाने वाली बात। इस टेस्टी और हेल्दी कोकम कड़ी या सोल कड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सूखा कोकम 8 से 10 टुकड़े, कोकम भिगोने के लिए गर्म पानी आधा कटोरी, फिर हमें चाहिए कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 1 कटोरी, हरी मिर्च 1 या 2, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 3 लीजिए, लहसुन की कलियां 3-4, ये ऑप्शनल है, जीरा 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। अब तड़का लगाने की सामग्री को जानते हैं। हमें चाहिए तेल या देसी घी लगभग 1 चम्मच, राई मतलब सरसों 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10 पत्ते, गार्निश करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम कोकम कड़ी मीन सोल कड़ी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले सूखे कोकम को 1/2 कटोरी गर्म पानी में भिगो कर रखिए। लगभग 1/2 घंटे बाद कोकम का टेक्सचर सॉफ्ट बनेगा। तब उसी पानी में कोकम को अपने हाथों से मसल दीजिए, मींस क्रश कीजिए। ऐसा करते समय उसके बीज आप हटा दीजिए। अब हम नारियल का दूध बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। मिक्सर के जार में कद्दूकस किया हुआ नारियल डालिए, उसमें हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और लहसुन ऐड कीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसे पीस लीजिए। अब इस पीसे हुए मिश्रण को महीन छलनी में डाले, छोटे छेद वाली छलनी से सॉलिड और लिक्विड पार्ट को अलग अलग कर दीजिए। सॉलिड वाले पेस्ट को अपने हाथों से निचोड़कर हमें नारियल का गाढ़ा सा दूध मिलेगा और वो लिक्विड वाला भी चाहिए। भाई टेस्टी सोल कड़ी को एंजॉय करने थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब इस नारियल के दूध में मसल कर बनाया हुआ कोकम और उसका पानी दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें मिलाइए थोड़ा सा नमक। अब इस गुलाबी मिश्रण को हम खुशबूदार तड़का लगाकर स्वाद का जायका निभाने वाले हैं। इसके लिए एक छोटे से पैन में थोड़ा तेल या घी गरम कीजिए। उसमें सबसे पहले डालिए सरसों मींस राई, मस्टर्ड सीड्स। फिर उसमें ऐड कीजिए कड़ी पत्ता। वाह वाह वाह, क्या बात! इस खुशबूदार तड़के को कड़ी में डाल दीजिए। 1 चम्मच की मदद से इसे मिक्स कीजिए। इस तरह सोल को खुश करने वाली खट्टी मीठी और जरा सी मसालेदार कोकम कड़ी हो गई है तैयार और इसे डेकोरेट करने हम हैं बिल्कुल ही तैयार।
आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सिन्हा। इस सोल कड़ी को डेकोरेट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप यहीं पर बने रहें, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस गुलाबी कोकम कड़ी को सुंदर से एक कांच के ग्लास में परोसिए। फिर इसकी सुर्खी को सजाने के लिए इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए। दैट्स इट। अब सोल कड़ी को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। सोल कड़ी का गुलाबी रंग निखारने के लिए मींस इसे डार्क पिंक बनाने के लिए आप इसमें बीट रूट का थोड़ा सा जूस मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका गुलाबी निखार और बढ़ेगा, साथ ही इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व कुछ हद तक बढ़ जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज को एंजॉय करने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब कीजिए। इस सोल कड़ी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है सोल को खुश करने वाली सोल कड़ी। गुलाबी रंग वाली सुंदर सी कड़ी दिखने में लगती है नजाकत से भरी। इसके टेस्ट से खुश होगा हर किसी का सोल और इसके स्वाद का ना कोई दूजा मोल। कोकम कड़ी है महाराष्ट्रीयन भोजन की शान। इसे टेस्ट करके आप जरूर करेंगे इसका गुणगान। नारियल का दूध और कोकम का कॉम्बिनेशन मतलब स्वाद का जायका निभाने वाला खट्टा मीठा क्रिएशन। आऊंगी आपसे मिलने हर सोमवार और शुक्रवार। शेयर करने कुछ रेसिपीज, मेरा दिल होता है बेकरार। अपने देश की खाद्य संस्कृति को जानने की हमारी ये छोटी सी कोशिश। हुकुम कीजिए ऑडियंस जी, हम पूरी करेंगे आपकी विश। देसी खाना खाकर गर्व। भारत की तरक्की का अब शुरू हुआ है पर्व। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, हमसे साझा कीजिए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अब हम सुनते हैं एक झटपट रीकैप। आज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमने बनाई आंब्याची अमृत फळे। अल्फोंसो मैंगो पल्प को खुशबूदार अंबा मोहर चावल के साथ पकाकर हमने मैंगो सीजन को सेलिब्रेट किया। उसके बाद हमने बनाई सोल को खुश करने वाली टेस्टी सोल कड़ी। नारियल का दूध और खट्टा मीठा कोकम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे टेस्ट बर्ड्स को दे रहा है फैसिनेशन, है कि नहीं? भारत के अलग अलग हिस्सों की खाद्य संस्कृति को हम स्वाद का जायका इस शो पर शामिल करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। वैसे रेडीमेड खाना ऑर्डर करना ये ऑप्शन तो हर कोई चूज कर सकता है, राइट? लेकिन अपने देश की जड़ों से जुड़े रहने के लिए हमें लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना खाना चाहिए और बनाकर औरों के साथ एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनापन जताने की कोशिश करते हैं। हमारे मन की भावनाएं मतलब ढेर सारा प्यार हम हर रेसिपी में जरूर ऐड करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि सिंपल सी लगने वाली आसान रेसिपी भी कंफर्ट फूड बन जाती है। जब शबरी जी ने भगवान श्री राम के लिए बेर चुने तब उन्होंने पहले उनको टेस्ट किया, क्योंकि शबरी जी चाहती थी कि भगवान श्री राम को सिर्फ मीठे वाले बेर ही खाने चाहिए और भगवान श्री राम जी ने उनकी भावनाओं का आदर किया। शबरी जी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने बिना हिचकिचाहट बड़े आनंद से ग्रहण किए, क्योंकि शबरी जी के मन की भावनाओं का भगवान श्री राम ने आदर किया। ठीक उसी तरह हमें भी खाना बनाते समय अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखना चाहिए। हमारे मन की भावनाएं हम बना रहे खाने में उतरकर उस खाने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश करती है। गुस्सा या चिड़चिड़ापन खाने की टेस्ट को बिगाड़ देता है। किचन में पकाए जाने वाले भोजन पर अच्छे संस्कार करने के लिए आपकी सोच मायने रखती है। भाई खाने और खिलाने का ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का।
वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा ही नहीं एकदम पक्का वादा। आज भारतीय सीमा की ओर से आप सबको कमिंग सून वाला मेरा बाय बाय।

0: बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत के जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य
1: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट अंदोस आज शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। कहानियां आपकी जिंदगी को बदल देती है, कहानियां जिसे सुनकर आपको नींद आती है, कहानियां जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाती है, कहानियां जो आपकी जिंदगी में ठहराव लाती है, कहानियां जो आपको जीने का मकसद देती है, कहानियां जो प्रेम को अलग अलग रूप देती है, कहानियां जो दादियां सुनाती है, कहानियां जो जीने का मकसद बताती है, कहानियां जो एक शर्ट के बटन में छुपी होती है, कहानियां जो गुल्लक के सिक्के में छुपी होती है, कहानियां जो बालियों की खनक में छुपी होती है, कहानियां जो पायल में बसती है, कहानियां जो सितार में सुनाई देती है, कहानियां जो राग में सुनाई देती है, कहानियां जो नजारों में नजर आती है, कहानियां जो पंछियों के झुंड में नजर आती है, कहानियां कहानियां कहानियां। तो दोस्तों, कहानियां हर जगह, बस जरूरत है तो उन्हें सुनने की, उन्हें महसूस करने की। तो ऐसी एक कहानी लेके आया हूं मैं आज कहानियों के गुल्लक में, जिसका नाम है एक छोटी सी मदद। मुंबई की भीड़ भाड़ भरी लोकल ट्रेन सुबह के 8:45। सब लटकते हैं इस ट्रेन में, कभी जाके देख लो आप मुंबई में, अगर आप कभी लोकल से ट्रैवल करो तो आपको नजर आएगा कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे का जो टाइम होता है, इन 4 घंटों में अगर आप ट्रेन में चढ़ भी पाए तो ये आपके लिए किसी ड्रीम को अचीव करने से कम नहीं होगा। बहरहाल सुनते हैं कहानी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हर रोज की तरह लोग भाग रहे थे, किसी को ऑफिस पहुंचना था, किसी को कॉलेज और किसी को इंटरव्यू। इसी भीड़ में एक 24 साल का लड़का था, अमन, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता था। पापा एक नॉर्मल मजदूर थे, माँ हाउसवाइफ थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी पिछले 1 साल से जॉब नहीं मिली थी। आज उसका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। उसके बैग में सिर्फ एक फाइल रखी थी और पॉकेट में बस 120 रुपए। ट्रेन आई और सब लोग धक्का मुक्की करते हुए चढ़ गए। अमन भी किसी तरह ट्रेन में अंदर घुस गया। ट्रेन कुर्ला स्टेशन के पास पहुंच ही रही थी कि उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। लगभग 70 साल के बुजुर्ग, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे अंकल थोड़ा साइड हो जाओ ना। दूसरा बोला, रोज ड्रामा करते हैं लोग। लेकिन अमन को कुछ अलग लगा, वो तुरंत उनके पास गया। अंकल आप ठीक हो ना? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से बोला, पापा पानी। अमन ने बिना सोचे अपनी बोतल निकाल दी। बोतल में आधा ही पानी बचा था। खुद इंटरव्यू के लिए जा रहा था अमन, फिर भी उसने पूरा पानी अंकल को पिला दिया। थोड़ी देर बाद अंकल नॉर्मल होने लगे। अमन ने पूछा, हॉस्पिटल चलना है क्या? अंकल मुस्कुरा दिए, नहीं बेटा, शुगर लो हो गई थी ना, तभी स्टेशन आ गया। अमन उतरने लगा। अंकल ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा तुम्हारा नाम? अमन। फोन नंबर? अमन मुस्कुरा दिया, अंकल उसकी जरूरत नहीं है। और वो भीड़ में खो गया। कट टू इंटरव्यू हॉल। रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी सर, इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप 12 मिनट लेट हो। अमन ने बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने एंट्री नहीं दी। वो बाहर बेंच पर बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मैं ट्रेन में नहीं रुकता, उसने घर फोन नहीं किया, सीधे मरीन ड्राइव चला गया हताश मायूस होकर। समंदर के सामने बैठकर बस ये सोचता रहा, एक छोटी सी मदद और बदले में इंटरव्यू भी चला गया। उसे लगा अच्छा इंसान बनना शायद प्रैक्टिकल दुनिया में लॉस की डील है। उस रात घर जाकर माँ ने पूछा इंटरव्यू कैसा गया बेटा। अमन ने झूठ बोल दिया अच्छा था माँ, पापा बोले जॉब मिल गई। लेकिन अमन जानता था आज उसने एक मौका खो दिया है। दो दिन बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं अमन से बात कर रहा हूँ? जी, कल सुबह 11 बजे इस एड्रेस पर आ सकते हो? पर क्यों? सर ने बुलाया है। कौन सर? बस आ जाइए। फोन कट। अमन को लगा कोई फ्रॉड होगा, लेकिन एड्रेस देखकर वो हैरान रह गया। मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस। अगली सुबह वो वहां पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम सुनते ही बोली सर आपका ही वेट कर रहे थे। अमन कंफ्यूज हो गया। कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और सामने वही ट्रेन वाले बुजुर्ग अंकल बैठे थे, लेकिन इस बार सूट पहने हुए, साथ में कंपनी के डायरेक्टर्स। अमन शॉक हो गया। अंकल आप? अंकल मुस्कुराए, बेटा मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं। अमन की सांसें रुक गई। अंकल बोले उस दिन ट्रेन में किसी को नहीं पता था मैं कौन हूं, सबने मुझे इग्नोर किया, सिर्फ तुम रुक गए। मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए नहीं बुलाया हूं यहां पर, मैं देखना चाहता था क्या तुम वैसे ही इंसान हो जैसे उस दिन थे। और यहीं से अमन की जिंदगी पर एक नया मोड़ आया। वो नया मोड़ क्या है तो सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दोस्तों एक बात ये जरूर समझिए कि आपकी की हुई छोटी सी मदद, छोटे से भी मदद, यानी किसी को पानी पिलाना हो या किसी बच्चे को बिस्किट्स देना हो या किसी भूखे को एक वड़ा पाव खिलाना हो, कोई भी छोटी छोटी से छोटी हेल्प, बहुत छोटी हेल्प कभी वेस्ट नहीं होती, कभी जाया नहीं जाती। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जिसे कहते हैं ना कर्मा हर जगह होता है। तो आपके कर्म जितने अच्छे होंगे वो आपको आपकी जिंदगी में अच्छाई की ओर ही लेके जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए अगर आपसे आप छोटी सी भी हेल्प कर सकते हो किसी के लिए तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक अच्छा काम आप और कर सकते हैं, इस ब्रेक पर सुनते रहिए गाने और ब्रेक के बाद फिर से आइए, क्योंकि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है वो बहुत मजेदार है। तो जाइएगा नहीं, सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। इतनी सारी कहानियां कहां कहां से खोजनी पड़ती है क्या बताओ, पर ठीक है। फिलहाल हम थे अमन की कहानी पर। अमन ने कैसे एक बुजुर्ग इंसान को ट्रेन से रुककर हेल्प की और बाद में उसका इंटरव्यू चला गया। वो बेचारा हताश होकर मरीन लाइन पे बैठा, फिर घर आया, घर पे झूठा जवाब दिया। हाँ मैं क्यों रिकैप बता रहा हूँ, आप तो सुन चुके थे ना कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी खामोशी थी। अमन अब भी यकीन नहीं कर रहा था कि लोकल ट्रेन में जिस बुजुर्ग को उसने पानी पिलाया था वो मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर थे। उनका नाम था राजेंद्र मेहता। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हें पता है उस दिन तुमने मेरी सिर्फ जान नहीं बचाई थी, तुमने मेरा इंसानियत पर भरोसा भी वापस लौटा दिया। अमन ने धीरे से कहा, सर मैं तो सिर्फ वही कर रहा था उस दिन जो हर इंसान को करना चाहिए था। राजेंद्र जी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। बेटा बस उसी कार्य की वजह से, उसी मदद की वजह से आज आप यहां हमारे सामने बैठे। इस बार इंटरव्यू में अमन से टेक्निकल क्वेश्चंस कम और जिंदगी के सवाल ज्यादा पूछे गए। एक सवाल पूछा गया उससे, कल अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हो और किसी भूखे बच्चे को खाना चाहिए तो क्या करोगे? अमन ने एक गहरी सांस ली और बिना सोचे बोला, पहले उसका पेट भरूंगा, पैसे दोबारा आ जाएंगे, भूखा बचपन दोबारा नहीं आएगा। रूम में बैठे हुए सारे डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इंटरव्यू खत्म हुआ। राजेंद्र जी खड़े हुए और अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, वेलकम टू आवर फैमिली। अमन को जॉब मिल गई लेकिन उसने कभी किसी को ट्रेन वाली बात नहीं बताई। उसके लिए वो मदद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बस एक अच्छी आदत थी जो शायद वो हमेशा हर जो जिसको मदद की जरूरत हो उस इंसान को हमेशा वो मदद करता, वो उसकी एक अच्छी आदतों में से थी। अब अमन को जॉब मिल गई, अमन नौकरी करने लगा। एक दिन गुजरा, एक महीना।

महीना गुजरा, दो महीना गुजरा, गुजरते गुजरते छह महीने गुजर गए और एक नए सफर का अब हो गया आगाज। अमन कंपनी का सबसे मेहनती एम्प्लॉय बन चुका था, ऑफिस में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन राजेंद्र जी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। अमन, मेरी एक विश है। जी सर, बोलिए ना। हर फ्राइडे हम लोग किसी न किसी की मदद करेंगे। अमन हैरान हुआ, सर कंपनी? राजेंद्र जी बोले, नहीं हम। उस फ्राइडे दोनों बिना किसी मीडिया, बिना किसी कैमरा के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, किसी पेशेंट की मेडिसिन भर दी, किसी बच्चे की स्कूल फीस भर दी, किसी बुजुर्ग के लिए हियरिंग मशीन खरीद ली, और हर बार एक ही शर्त होती, कभी किसी को मत बताना किसने मदद की। और यहां से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसकी शायद कभी राजेंद्र जी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी जिंदगी में वो अपने एक नॉर्मल से एम्प्लॉय के साथ जाकर ऐसी मदद लोगों की करेंगे। एक दिन ऑफिस की पैंट्री में पियून रमेश उदास बैठा था। अमन ने पूछा, क्या हुआ? रमेश बोला, मेरी बेटी का कॉलेज एडमिशन है, फीस नहीं भर पा रहा। उस रात अमन ने अपनी सेविंग से उसकी आधी फीस भर दी। बाकी इम्प्लॉयज को पता चला, सबने मिलकर बाकी की अमाउंट अरेंज कर दी। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने बुक स्पॉन्सर्स कर दी। दो दिन में पूरी फीस जमा हो गई। रमेश रो पड़ा। उसकी बेटी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उस दिन ऑफिस में एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ, लिटिल हेल्प क्लब। रूल सिर्फ एक था, हर एम्प्लॉय महीने का सिर्फ 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जो दे सकता है

सिग्नल पर एक छोटा सा लड़का पेन बेच रहा था। लोग उसे डांट रहे थे। अमन ने उससे पूछा, स्कूल जाते हो? लड़का बोला, पापा का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से मैंने स्कूल छोड़ दिया। अमन ने उस बच्चे से सारे पेन खरीद लिए, लेकिन पेन लेने के बाद वो बोला, कल से पेन नहीं बेचना, स्कूल जाना। उसने उस लड़के का एडमिशन एक एनजीओ के थ्रू करवा दिया। उसका नाम था इमरान। उस दिन अमन को नहीं पता था ये छोटी सी मदद आगे चलकर उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो दोस्तों, अमन की जो आदत थी हर इंसान को मदद करने की, चाहे वो इंसान छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज थी, वो थी इंसानियत, और वो उस इंसानियत को अपने अंदर जिंदा रखे हुए था। इसीलिए हर किसी व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत होती थी तो अमन उसके लिए हमेशा खड़ा होता, चाहे वो जिस प्रकार उसे हेल्प कर पाए। जैसे पीयून की बच्ची की आधी फीस भर दी, उसके पास शायद पूरे फीस भरने के पैसे ना हो, इसलिए उसने आधी फीस भरी, बच्चे के पूरे पेन खरीद लिए। वो हर तरह की मुमकिन कोशिश करता जिससे जो भी परेशान है, जिसे भी हेल्प की जरूरत है, उसे वो करे और इंसानियत का पैगाम और आगे पहुंचाए। तो आगे इमरान को मदद करने के बाद इमरान क्या स्कूल पढ़ पाएगा? क्या इमरान स्कूल जाएगा या फिर इमरान फिर से उस सिग्नल पर आके पेन बेचेगा? क्या होगा कहानी में, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि कहानी के खत्म होने होने तक आप इस कहानी से एक ऐसी सीख जरूर लेंगे जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर बहुत मजेदार गाने।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं आपका आचार्य 90 FM पर। आप सुन रहे हैं कहानियों गुल्लक, कहानियों की गुल्लक आरजे शब्बीर के साथ। जैसे हम जान रहे हैं कि इमरान की मदद कर दी पेन खरीद कर, उसे एनजीओ के द्वारा एक एडमिशन करवा दिया उसका स्कूल में। इमरान स्कूल जाने लगा, धीरे धीरे ऑफिस का जो लिटिल हेल्प क्लब शुरू हुआ था वो भी अब और ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। सारे काम अच्छे से हो रहे थे, दिन बदले महीने बदले और पूरे 2 साल बीत गए। राजेंद्र जी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, एनुअल फंक्शन में हजारों एम्प्लॉयज बैठे हैं, सब सोच रहे थे कि स्पीच बिजनेस के बारे में होगी, लेकिन राजेंद्र जी ने स्टेज पर आते ही एक बोतल पानी उठाई और बोले, मेरी कंपनी को आज जो असली लीडर मिला है उसने मुझे किसी बोर्ड रूम में इंप्रेस नहीं किया था, उसने मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन में एक बोतल पानी देकर जीत लिया था। पूरा हॉल खामोश था, सबकी नजर अमन पर थी। उस दिन पहली बार कंपनी को पता चला कि एक छोटी सी मदद ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचाई थी, उसने पूरी कंपनी की कल्चर बदल दी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ साल बाद वही छोटा लड़का इमरान फिर से अमन की जिंदगी में लौटने वाला था और इस बार मदद का असली मतलब दुनिया देखने वाली थी। 3 साल बीत चुके थे, अमन को अब कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी, सैलरी अच्छी थी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर गई थी। पापा ने अब काम से रेजिग्नेशन दे दिया था, मां अब अपने जो शौकिया तौर पर गाने गाती थी वो पूरे करने में लगी थी, लेकिन चीज नहीं बदली। और वो एक चीज थी, हर फ्राइडे अमन किसी ना किसी की बिना नाम बताए मदद करता था। उसका मानना था मदद का असली मजा तो तब है जब सामने वाले को सिर्फ इंसानियत याद रहे, मदद करने वाले का नाम नहीं। एक शाम अमन ऑफिस से घर लौट रहा था, हाईवे पर उसने देखा कि एक बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई है। डजन्स लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, कोई इंजर्ड आदमी के पास नहीं जा रहा था। अमन तुरंत अपनी कार रोककर भागा, उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, अपनी शर्ट फाड़कर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की और इंजर्ड को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर्स बाहर आ गए और बोले, अगर पेशेंट 10 मिनट और लेट आता तो बचना मुश्किल था। अमन चुपचाप वहां से निकल गया, उसने अपना नाम भी रजिस्टर में नहीं लिखवाया। कुछ महीने बाद कंपनी के एनुअल CSR इवेंट हुआ, चीफ गेस्ट का नाम अनाउंस हुआ, डॉक्टर इमरान शेख। अमन ने नाम सुना और हैरान रह गया। स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट यंग लड़का आया, स्पीच शुरू हुई। आज जो मैं हूं उसका क्रेडिट मेरी मेहनत को कम और 2 अननोन हीरोज को ज्यादा जाता है। सब ध्यान से सुनने लगे। पहला हीरो एक इंसान जिसने बचपन में मेरे सारे पेन खरीदने के बाद मुझे स्कूल वापस भेजा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर इमरान ने स्टेज से अमन की तरफ देखा और कहा, मुझे आज भी याद है उस भैया ने कहा था, जिंदगी पेन बेचने के लिए नहीं सपने लिखने के लिए होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और दूसरा हीरो, डॉक्टर इमरान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, दूसरा हीरो मुझे कुछ महीने पहले मिला था, या शायद मिला भी नहीं, सब कंफ्यूज हो गए। एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं ही वो पेशेंट था। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी अननोन इंसान ने मेरी जान बचाई, हॉस्पिटल पहुंचाया, नाम तक नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा, आज भी मैं उस हीरो को ढूंढ रहा हूं। अमन चुप था। राजेंद्र मेहता जो ऑडियंस में बैठे थे सब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा कुछ मदद
अप्लॉज के लिए नहीं होते। अमन सिर्फ मुस्कुराया। फिर क्या, उसी शाम राजेंद्र जी ने एक अनाउंसमेंट की, आज से हम कंपनी के लिटिल हेल्प क्लब को एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना रहे हैं। नाम रखा गया लिटिल हेल्प फाउंडेशन। फाउंडेशन का मिशन बहुत सिंपल था, हर इंसान रोज सिर्फ एक छोटी मदद करे, ना करोड़ों का डोनेशन ना बड़े प्रॉमिसेस, सिर्फ एक छोटा सा काम, किसी को रोड क्रॉस करवाना, किसी स्टूडेंट्स की फीस भरना, किसी को ब्लड डोनेट करना, किसी को जॉब रेफर करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास इंसान की बात सुन लेना। धीरे धीरे करके 5 साल बीत गए, फाउंडेशन पूरे इंडिया के कई शहरों में काम करने लगी, हजारों वॉलंटियर्स जुड़ गए, लाखों लोगों तक मदद पहुंचने लगी। मीडिया ने राजेंद्र जी से पूछा, सर इतनी बड़ी मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? राजेंद्र जी ने टेबल पर रखी एक पुरानी प्लास्टिक की पानी की बोतल उठाई और बोले, इस बोतल से। रिपोर्टर हैरान रह गए। राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, एक दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में एक लड़के ने अपना आधा पानी एक अनजान बुजुर्ग को दे दिया था। उस लड़के को नहीं पता था कि उसकी वजह से एक बोतल पानी आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। आज कई साल बीत चुके हैं, अमन के बाल सफेद होने लगे हैं। एक दिन वो पार्क में बेंच पर बैठा अमन के बाल सफेद होने लगे हैं एक दिन वो पार्क में बेंच पर बैठा था तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती आई, दादू आपकी स्टिक गिर गई। उसने स्टिक उठाकर अमन को दे दी। अमन ने मुस्कुराकर पूछा, थैंक यू बेटा, तुमने मदद क्यों की? बच्ची बोली, मम्मी कहती है छोटी सी मदद कभी छोटी नहीं होती, पता नहीं वो किसकी पूरी दुनिया बदल। अमन की आंखें भर आई, उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे राजेंद्र जी बात फिर से सुन रहे हो। इंसान अपनी कमाई से अमीर नहीं बनता, अपनी मदद से बनता है। और उस पल अमन को समझ आया, एक बोतल पानी से शुरू हुआ सफर एक सोच बन चुका था, एक आदत, एक मूवमेंट, एक मिसाल बन चुका था। कभी भी किसी छोटी मदद को कम मत समझना। एक मुस्कान, एक ग्लास पानी, एक हौसला, एक रेफरल, एक सही वक्त पर दिया गया सहारा किसी की पूरी जिंदगी डायरेक्शन बदल देता है, क्योंकि अच्छाई कभी वेस्ट नहीं जाती, वो हमेशा किसी ना किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। तो दोस्तों, जैसे कि एक आधी पानी की बोतल से शुरू हुआ सफर आज इतनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट कर चुका था कि जिसकी कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, जितनी भी हो, लोगों की मदद करिए और सुनते रहिए आचार्य 90 FM। बहुत मजेदार गाने, बहुत मजेदार कहानियां, और मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए कहानियों के गुल्लक, सिर्फ आचार्य 90 FM पर।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था। भाई, अपना वादा निभाने के लिए हमें तो आना ही पड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? अर्ज किया है आज का ये पल आपके नाम, इस शो का हर लम्हा भी आप ही के नाम है। इस पल के इंतजार में न जाने कब से हम बेकरार थे। आपके आने से ऑडियंस जी इस बेचैनी को मिला कुछ करार है। सोमवार की दोपहर में आप, शुक्रवार की शाम में भी आप, हर खाने के स्वाद में आप और हर स्वाद के जायके में भी आप। खाना बनाने की सोचूं तो ख्यालों में आप, गाना गुनगुनाने लगूं तो हर सुर में आप, सुरों की महफिल में आप और महफिल की रौनक भी आप, महफिल की शमा भी आप और उस शमा के परवाने भी आप। स्वागत है आपका इस जायकेदार महफिल में। आपके आने से तसल्ली पाई इस साहिल ने। आपके आने से बदले हमारे अंदाज और इस खुशी से खुश हुए सारे अल्फाज। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी एक स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है वो एक फेमस सब्जी और आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस सब्जी से पेठा भी बनता है। इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति इस सब्जी में है। इस अनोखी सब्जी को कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा मींस एश गॉड की। मराठी में इसे कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। सफेद पेठा दिखने में गोलाकार और भारी वजन वाला होता है। इसका बाहरी हिस्सा कड़क और अंदरूनी हिस्सा जूसी होता है। पूरी तरह से पकने के बाद इस पर सफेद पाउडर टाइप परख दिखाई देती है। इस हेल्दी पेठा की सब्जी से आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा। इसे काशी हलवा नाम से भी जाना जाता है। कद्दूकस किया हुआ पेठा, देसी घी, चीनी और खोया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सफेद पेठा अप्रोक्सीमेटली 1 किलो, चीनी अप्रोक्सीमेटली 1 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 5-6 चम्मच, हरी इलायची 4-5, केसर के धागे 7 या 8, मावा या खोया 1/2 कप, मिल्क मसाला 2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता सब 2-2, मुनक्का 10-12, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले पेठा को अच्छे से धो लीजिए। फिर हमें उसका छिलका और बीज हटाना है। छिलका और बीज हटाने के बाद उसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना है मींस उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए या तो फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हरी इलायची का छिलका हटाकर उसका फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ। साबुत इलायची को 1 या 2 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में घुमाने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? फिर हम केसर के धागों को 1 चम्मच गर्म दूध में भिगोकर साइड में रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से केसर उस दूध में अच्छे से घुल जाएगा और इस केसरिया रंग के दूध से पेठा हलवा बनाने की खूबसूरती में गजब का निखार आ जाएगा। अब आगे सुनते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए। 15 मिनट के बाद
हमें छुरी की मदद से उन ड्राई फ्रूट्स के पतले टुकड़े करने हैं। माय गॉड, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम पेठा हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाली एक कढ़ाई लीजिए। उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस को ऑन कीजिए।

फिर उसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ पेठा। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है, लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये एक तरफ से ही पक जाएगा। 10-15 मिनट के बाद उस पेठे का कच्चापन दूर होगा। तब हम उसमें डालेंगे चीनी, केसर और ढेर सारा प्यार। फिर इस मिश्रण को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएं। चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। पेठा का मॉइस्चर और चीनी का गीलापन सूखना चाहिए और ये मिश्रण गाढ़ा बनना चाहिए। इस स्टेज तक तो पहुंचने के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ये मिश्रण सूख जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोया यानी मावा और थोड़ी इलायची पाउडर। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सा बर्तन और उस बर्तन में इस गर्मा गर्म पेठा के हलवा को ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर काजू और बादाम के पतले टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान को इस पेठा के हलवा का भोग लगा ही दीजिए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस पेठा हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है ट्रेडिशनल पेठा का हलवा। सुनहरी सी एक रेसिपी जो है एकदम ट्रेडिशनल। पेठे का हलवा मींस यम्मी और न्यूट्रिशनल। ऑडियंस जी, किचन में कीजिए एंट्री और दिखाइए अपना जलवा। ऐसा करने के लिए आप जरूर बनाइए पेठे का हलवा। पेठे को कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। इलायची पाउडर डालकर इसे बनाया सुगंधी। पेठा घी और शक्कर का सुनहरा ये मिलाप। और साथ में सुनिए नए पुराने कुछ म्यूजिकल आलाप। खाने और गाने का ये मेल मतलब सेहत और मनोरंजन का सुंदर सा खेल। खाना और गाना यही है हमारे इस शो की जान। पारंपरिक खाना खाकर बढ़ाइए अपने देश का मान। सोमवार और शुक्रवार को रहूंगी मैं हाजिर, क्योंकि स्वाद का जायका शो के हम सब है मुसाफिर। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। भाई, पेठे का हलवा हमने बना लिया है, अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की। एक खट्टा मीठा फल है जिसका आकार लगभग बेर जितना या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पौधा कांटेदार और झाड़ियों वाला होता है। जब ये फल कच्चा होता है तब हरे रंग का दिखता है। पूरी तरह से पकने के बाद ये काले रंग का दिखता है। विटामिन सी से भरा ये फल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे किसान भाई इसे अक्सर अपने खेतों की मेंढों पर एज अ फेंस लगाते हैं। ऐसा करने से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते। यहां पर मैं बात कर रही हूँ करौंदे की। मराठी में इसे करवंद के नाम से जाना जाता है। इस करवंद से अचार, चटनी, जैम और जेली बनाई जाती है। आज के शो में हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को हम बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट एकदम चटपटा है। इस चटनी को आप सिंपल दाल चावल या सीधे रोटी पर लगाकर एज अ कंफर्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। करौंदे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हरा करौंदा या करवंद 1/2 किलो, हरी मिर्ची के टुकड़े 3-4, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ब्राउन गुड़ या चीनी 1 कटोरी, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बड़ी सौंफ पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। सबसे पहले आप एक साफ बर्तन में पानी लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच नमक को मिक्स करके साइड में रखिए। जब नमक घुल जाए तब उस सॉल्टी वाटर में सारे करौंदे लगभग 15 मिनट तक भिगोकर रख दीजिए। वैसे ये मेथड आप बाकी फल और सब्जियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उन फल या सब्जियों में से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। फिर उन करौंदा मींस करवंद को एक कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हरे करौंदे के हम 4 टुकड़े करने वाले हैं और अंदर का बीज हटाने वाले हैं। उसके बाद आप लीजिए एक मोटे बेस वाली कढ़ाई। उस कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा तेल। इस तेल को हम धीमी आंच पर गरम करेंगे। अगर आप नारियल का तेल यूज करें तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा। फिर उसमें वघार या तड़का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों। सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा।
1: ये सीक्वेंस
0: सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों, सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा। ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए, पहले सरसों फिर जीरा। सरसों और जीरा को चटकने दीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब तड़के में डालिए खुशबूदार हींग। हींग डालने के बाद नंबर आता है मेथी पाउडर और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अब बारी आती है हल्दी पाउडर और नमक की। फिर हम उस मिश्रण में ऐड करेंगे सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे करौंदे मींस करवंद के टुकड़े। इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है थोड़ी सी मिठास की मींस अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो शक्कर के बदले ब्राउन गुड़ को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ये चटनी ज्यादा पौष्टिक बनेगी। फिर इस मिश्रण पर एक ढक्कन रखिए। इसे लो फ्लेम पर हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट होगा। 5 मिनट होने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 कप पानी ऐड कीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और पकी हुई चटनी को उसी तरह ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चटनी का टेक्सचर और गाढ़ा होगा। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कीजिए। उसका रीजन तो आपको पता ही है, खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में रखने से उस धातु की मींस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को डेकोरेट करने आप इस पर छिड़किए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर आपको तीखा खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो उस पर मींस उस चटनी के मिश्रण पर आप रखिए एक हरी मिर्ची। दैट्स इट। इस प्रकार हमारी खट्टी मीठी टेस्ट वाली करौंदा या करवंद की चटनी हो गई है तैयार और इसे टेस्ट करने घर के लोग कब से बैठे हैं एकदम बेकरार। तो जनाब, इस गर्मी के सीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप करौंदा की चटनी को जरूर बनाइए और इसे अपनों के साथ मिल बांट कर मजे से खाइए। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। ताजा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। वैसे ये करौंदा या करवंद की चटनी को आप एयर टाइट डब्बे में भरकर 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर ही सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे ये करौंदा चटनी इतनी टेस्टी होती है कि एकदम फटाफट बनती है और गटागट खाकर खत्म भी हो जाती है।

मराठी में करवंद, खाओ देसी खाना और सेहत बनाओ बुलंद। पारंपरिक खाने को क्यों करे नजरअंदाज, इसे खाकर करे नए ट्रेंड का आगाज। खट्टे मीठे फल में डाला मिर्ची मसाला, एक बार खाकर तो देखिए आधी टेंशन का शला। संस्कृति और स्वाद का स्वादिष्ट मेल मींस सेहत और मनोरंजन का सुपर हिट खेल। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, आपसे होने वाली हर मुलाकात करती मुझे बेकरार। आचार्य 90 FM है योर ओन रेडियो, बातें होंगी आपसे फ्रॉम अवर स्टूडियो। स्टूडियो से रेडियो तक होने वाला सफर, मतलब सेहत और म्यूजिक का जुगलबंदी ऑफर। दिल से करती हूँ आपका धन्यवाद, अच्छा लगता है मुझे आपसे करना संवाद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। स्वाद का जायका इस शो के आज के एपिसोड में हमने बनाया पेठे का हलवा, शुरुआत में ही मीठा बना दिया। कुष्मांड के नाम से भी जाने जाने वाली इस सुपर कूल सब्जी में शक्कर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर हमने ये स्वीट डिश बनाई। इस काशी हलवा के नाम से भी फेमस रेसिपी को हमने एकदम शिद्दत से पकाया। इस प्रकार हमने एकदम मधुर अंदाज में अपने प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाई। फिर बारी आई करौंदे की चटनी की। ये खट्टी मीठी चटनी है, मराठी में इसे करवंदा ची चटनी के नाम से जाना जाता है। कच्चा करौंदा, चीनी और कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हमने ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई। सिंपल दाल चावल या फिर गरम रोटी के साथ इसे खाना मींस कंफर्ट फूड वाला मूड निभाने जैसा है। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही रिमझिम बारिश का मौसम आएगा और लजीज खाने के साथ सुहाने गाने गुनगुनाने का आपका मन जरूर करेगा। इसलिए आचार्य 90 FM से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अर्ज किया है, एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा जवाब आया अभी। ठंडी छाव लेकर आए बादल, लेकिन आपकी याद ने ऑडियंस जी हमें भिगो दिया तभी। सोमवार और शुक्रवार का मनचाहा इंतजार, मतलब धूप में आए जैसे बारिश से बहार। आप ही हो ऑडियंस जी आचार्य 90 FM का परिवार, खुश नसीब है वो जिसे मिले आपका इकरार। टेस्टी व्यंजनों के साथ सुरीली सी तान मींस अपनापन जताने का मिल गया मान। अब कर ही दीजिए आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब और दोस्ती की व्याख्या को जरूर कीजिए डिस्क्राइब। ज्यादा बातें करने का अब नहीं है टाइम, दोबारा मिलने आऊंगी और करूंगी रेसिपीज और सॉन्ग्स को कंबाइन। आपकी मौजूदगी से ये शो बना ब्राइट, दुनिया में रोशन हो हमारी संस्कृति की लाइट। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं 7 अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होता है। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच 7 लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस। फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यश भी। सबने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही है सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई। और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजेस धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बापुराव गाइड, उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलो वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है। बापुराव ने जवाब दिया, जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे। उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेड था, लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी सितंबर 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की
और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकेंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते दो हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों को।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने GPS चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकेंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी। क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे। विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया। टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था? बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था। उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के छलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई। उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने? कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर
के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई। रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था। उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया। उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया, बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी, मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी, उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया, सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी, पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था, वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हां में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी।

लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बाकुराव ने आंखें बंद कर दी, जिससे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, छह लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन सात लोगों को अब बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के उल्लेख।

स्वागत है आपका आचार्य 90 FM में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उसकी आवाज भर गई। मैं गाइड था। मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे।

0: धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी, हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी, उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है, जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था, पेज पर खून जैसा लगा था, और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी, बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई, और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था, और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया, और बापू राव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था, एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मेरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी। सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी, पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक। केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था, पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े, और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम वन, कबीर, रिया, सना। टीम टू, आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए, और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंट्स। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेड डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर। बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हग किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं। उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये 7 लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और सातों के सातों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है।
1: तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

76 to the William Drone address.

0: everyone, you are listening Acharya 90 FM, your own radio. Today we have with us Ms. Achal Singh and guest with us Ms. Smita Mishra. And also we have our own intern Pranav Nair. And we are going to talk about suicide prevention. Let me introduce our guest. So Smita is mental health professional, visiting faculty at NMIMS College, actively doing awareness session around thing mental health, and a trauma-informed psychologist. So I would like to ask a question to our guest, Smita ma'am. Let's tell our audience, basically, what is mental health?
1: Okay. So mental health, again, हमें isolation में I feel discuss नहीं करना चाहिए. जब हम health की बात करते हैं, health में हेल्थ की अगर WHO के डेफिनेशन को हम देखें तो इट टॉक्स अबाउट कि अ हेल्दी पर्सन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिजीज़ का एब्सेंस है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, इट इज़ आल्सो अबाउट कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ सब काम करता है. तो मेंटल हेल्थ, अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, लोग जो है उसे कन्फ्यूज करते हैं मेंटल इलनेस के साथ. सो नॉट एवरी वन इज़ मेंटली इल, बट एवरी वन हैज़ अ मेंटल हेल्थ they need to take care of, just like they take care of their physical health. It's about their emotions, their feelings, their personality. That's about it.
0: So actually हम देख रहे हैं कि specifically अगर बात किया जाए young adults के बारे में, what would be your advice on mental health, how they can prevent themselves from the suicidal thoughts and
1: how they can prevent themselves. ओके, आई थिंक अगेन हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सुसाइडल थॉट्स, उसकी रूट्स क्या है एंड क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन. देन हाउ कैन वी प्रिवेंट इट. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय सुसाइडल थॉट्स. जब एक व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड टू, और काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो इस पेन को ख़त्म करने का जो एकमात्र तरीका है, इट इज़ टू एंड दिस लाइफ. तो अगर ये लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसा कोई पेन भी नहीं होगा. दिस इज़ हाउ, दिस इज़ व्हाट सुसाइड इज. एंड देन हाउ दे कैन प्रिवेंट इट इज, देयर आर डिफरेंट methods to do that, but जब हम suicide prevention के बारे में बात करते हैं, I just want to take a moment and highlight कि जो suicide prevention का responsibility है, ये अकेले एक बच्चे के ऊपर या अकेले एक individual के ऊपर नहीं आना चाहिए, जो usually आता है. क्योंकि हम suicide prevention के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि it is up to that individual or their therapist, but I feel that prevention is a collective responsibility. When I say collective responsibility, I mean ki everyone has a role. A teacher has a role, a parent has a role, classmates or peer has a role. Larger scale mein dekhe to school as an institution ya office as an institution has a role. Media has a role ki wo kaise depict kar rahi hai, kaise present kar rahi hai suicidal cases, kya usko wo sensation bana rahi hai ya sensitively handle kar rahi hai. Then a very big role of policy makers, government, state. Do they have that enough resources जहाँ पे prevention के लिए, मतलब वो condition है जहाँ पे वो last stage पर पहुँचेगी ना, तो prevention के लिए अकेले एक बच्चे पे वो नहीं आना चाहिए कि how they should do it. It should be a collective effort because it's a collective responsibility.
2: I wanted to ask, what do you think, what is the very general

0: teenagers, a lot of young adults today feel lonely despite having a lot of people around them. And it's not like they are not trying to do anything to feel less lonely. But 2023 mein WHO ne declare kar diya tha ki it's a public threat, loneliness is a public threat. But aisa nahi hai ki nahi try kar rahi hai. uska jo contradict, agar hum irony dekhe to yahi generation hai jo extremely try kar rahi hai to feel less lonely. There is pressure to enjoy, there is pressure to have fun, pressure to make connections. It's the same thing. Like if we want to take an example, we can take an example of dating apps. A lot of young adults, a lot of teenagers, a lot of college going students are using dating apps, and I am in no position to say ki wo use karna galat hai ya nahi hai. It's a personal choice. It is helping people find connections, then why not? But then there's something called as dating burnout, jo log feel kar rahe hain, which is very similar to workplace burnout. Or workplace burnout mein bhi wahi emotional exhaustion hota hai, sab kuch like everything is same. It's just that the difference is yahan pe hum jo swipe karte hain dating app mein, the job here is to find connection. So there's a lot of exhaustion that these people generation feel to make a meaningful connection. So there's a lot of sense of loneliness. And then apart from this, there's also constant conflict in relationships. And when I say relationship, it is beyond two partners who are dating. It goes to the families as well. A lot of the time a teenager simply feels ki why are they not listening to me, yeah, why is it so difficult for them to understand what I'm telling them. On the other hand, parents are like, we are trying to protect our children, and whatever we are saying is because of their own betterment. So there's a lot of conflict, there's a lot of communication gap, and this communication gap is also, there's also emotional gap ki hum nahi samajh pa rahe ki what the other person is feeling. So that is me. I think I pointed out loneliness and then family conflict, and there's also external pressure like societal pressure about performance, about marks. मार्क्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है अबाउट द केसेस, बट इट इज़ ओनली जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. अगर हम डेटा की बात करें तो ओनली 1 समथिंग पीपल आर ओनली लाइक. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि देर इज़ नॉट वन पर्टिकुलर कॉज टू सुसाइड. अगर अगेन मीडिया में भी रिप्रेजेंट करते टाइम काफ़ी लोग ना नैरो डाउन कर देते हैं. अगर आपको रिसेंट याद रहेगा न्यूज़ में जो आया था अबाउट वन फैमिली, अ टीनेजर जंप फ्रॉम द क्लिफ, also followed, and media में उसने उसको sensation बना दिया गया था जहाँ पर एक particular reason के साथ उसको connect कर दिया गया. But it is not just about one particular reason, it is the result of so many other stressors that a person is facing.
1: So ma'am, I do have a question about, like आपने बोले करके family के bond की वजह से भी जो person है वो suffer करता है. So I do wanna know करके अगर फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है, ऑन अ पर्सनल नोट आई थिंक आइदर द पर्सन चूज अनदर कैरेक्टर टू लीव, लाइक वो उन्हें हाई पे भी लेके जा सकते हैं, एंड ऑन अ नेगेटिव नोट वो पर्सन एक्सट्रीम डिप्रेशन में जा सकता है. आई डू वांट टू नो योर थॉट्स ऑन दैट.
0: हेल्प मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटर. यू सेड दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स.
1: शुड आई रिपीट? मैम अगर एक बच्चे का अपने डैड के साथ में अच्छा बॉन्ड नहीं है, सो वो पर्सपेक्टिव से वो बच्चा आइदर एक अनदर पर्सनालिटी चूज करके एक हाई पे जा सकता है. अनदर पर्सनालिटी मैम लाइक गिव ऑन द इमोशन, लाइक इमोशंस को पीछे छोड़ के. सो ये इफेक्ट करता है क्या मेंटल हेल्थ को?
0: यस इफेक्ट करता है, बट आई थिंक अब दो चीज कुछ कंपेयर कर रहे थे. आई वुड वांट टू
1: लाइक इफेक्ट करना इन द सेंस, अभी जैसे बच्चा अगर अपने मॉम डैड से थोड़ा दूर रह रहा है, सो लाइक वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो रहा है उसके पास. सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिप्लेस द थिंग्स विद सम अदर. स्पोर्ट्स हो गया, लाइक उनके उसकी पर्सनल लाइफ हो गई. सो डज इट हेल्प?
0: समथिंग कॉल्ड एज कोपिंग मैकेनिज्म, जो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है. नाउ इन दिस सिचुएशन कहीं पे सपोज अगर हम बात करें कि फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट

0: इन जनरल टॉक्सिक है कि वहाँ पर रह के हमारा एनर्जी और ड्रेन हो रहा है, हम खुद से और एक्सप्लोर चीज़ें नहीं कर पा रहे, खुद को और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। देन फॉर समवन इफ दे हैव गुड कोपिंग मैकेनिज्म, लाइक इफ दे आर एज यू सेड कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, किसी आर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट डज हेल्प देम।
1: Lot of students where I see that, you know, not all of a sudden changes in behavior and suddenly rhythm shant ho jata hai, suddenly behavior change ho jata hai. So that I am noticing, but at the same time I also wanted to understand ki kya as a teacher or let's say as a older people than the younger ones, kaise hum wo pattern ko samjhe and what we can do for them.
0: Okay.
1: And how will we you know comfort them or you know make them.
0: Thank you so much for this question ma'am. Coming from a teacher, jaise main starting mein kaha tha ki collective effort hai, sabka role hai, so I'm very glad that this question is coming from a teacher's perspective. Ki agar student ya irrespective like the relationship koi humse chota kisi distress mein hai, तो पहले हम वो साइंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें। आपने करेक्टली कहा कि जैसे अगर बच्चा, तो हमें थोड़ा नोटिस करना है कि सडन चेंज क्या आ रहा है पर्सनालिटी में। अगर आउट गोइंग बच्चा सडनली शांत हो जा रहा है तो एक वो क्लियर कट साइन है। बट देन इसके अलावा भी कुछ साइंस है जो हम मिस कर देते हैं, जैसे कि अगर बच्चा हमें पता है कि किसी डिस्ट्रेस से गुजर रहा था, उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन सडनली अब काम हो गया है, एकदम ही शांत हो गया या फिर एकदम ही पॉजिटिव वे में सब चीज़ें ले रहा है, तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि नाउ थिंग्स आर बेटर, बट एक्चुअली थिंग्स आर द थिंग इज मेंटली उसने गिव अप कर दिया, मेंटली उसने एक डिसीजन बना लिया है कि अब तो टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब रोके भी कोई फ़ायदा नहीं है, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू। नाउ व्हाट एज अ टीचर वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस इज, फर्स्ट जब आप चेंजेस ये सब देख रहे हैं, एक्नॉलेज दैट, sit with that child and be verbal about what you saw or what you noticed, and without beating around the bushes, directly ask, are you thinking about killing yourself, are you thinking about suicide? Now ye bolne mein bahut discomforting lagta hai ki ye directly kaise bole, matlab isse to fir ho jayega ki hum ideas de rahe hain, lekin agar aapne dekha ki kahin kahin signs hai, bachcha bol raha hai ki there's no point in leaving, या मेरा बस हो गया है, या देख लो आपके बच्चा कहीं, पेरेंट्स अगर ये सुन रहे हैं तो बच्चा सडनली अपने पासवर्ड सब लिख रहा है, या सडनली रैंडमली किसी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट साइंस टू पिक अप एंड देन डायरेक्टली आस्क कि इज देयर एनीथिंग यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई एम हियर टू लिसन टू यू। और डायरेक्टली वो टॉपिक निकालो, क्योंकि हो सकता है कि आपके अलावा एज ए मतलब टीचर ने उनको पूछा है, शायद उसके अलावा पहले किसी ने नोटिस नहीं किया हो, पहले कभी किसी ने ये शायद ये थॉट के बारे में उन्होंने भी खुद से कभी बोला ना हो, तो वो जब आप सामने से डायरेक्टली पूछेंगे तो उन्हें एक स्पेस मिलेगा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। आई टोल्ड यू कि पिकअप ऑन दैट एंड सो किसी को अगर कंटिन्यू करें हम, तो गेटकीपर ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि सुसाइड प्रिवेंट कैसे करें, क्या नेक्स्ट स्टेप करें, तो एक मॉडल होता है विच इज़ कॉल्ड एज QPR मॉडल। तो क्यू में यू आस्क क्वेश्चंस एंड देन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली पूछो, देन पी में इट इज़ नॉट लाइक कि आपको सडनली उसको परसुएड करना है कि डोंट डू इट, सडनली वो होगा भी नहीं और वो शायद उस स्टेट पे है भी नहीं कि सारी लॉजिकल रीजनिंग वो एक्सेप्ट कर पाए, तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप डिले करें जितना उनके मतलब असेस करें क्वेश्चनिंग के टाइम पे कि रिस्क कितना है। अभी असेस कैसे करेंगे, चेक करना कि सिर्फ आइडिया है या प्लान भी है, तो सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल प्लान भी है। अगर उन्होंने प्लान भी करके रखा है कि आसपास ये है तो आई कैन डू दिस या आई कैन जंप फ्रॉम दैट, सो द रिस्क इज़ मच हायर एट दैट टाइम। तो वो रिस्क असेसमेंट करने के बाद persuasion, but you just have to sit there with them, persuade them that this is not the time to take any action and I'm here with you, instead of directly गिविंग देम सोल्यूशन, जस्ट टेल देम दैट दे आर हियर विद यू. तो वो लोनलीनेस का जो मैंने कहा था, वो भी थोड़े उन्हें फील होगा कि येस समवन इज देयर एंड दे डू नॉट हैव टू कैरी दिस मच पेन ऑन देयर ओन, समवन इज देयर फॉर देम टू शेयर इट विद. बोलो कि हम साथ में ये चीज़ हैंडल करेंगे. एंड देन आर इज टू रेफर, रेफर इट टू पीपल हु आर एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट, इमरजेंसी केयर सेंटर्स. अगर ये सब इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. या तो आप इनके साथ बैठो और बोलो कि लेट्स टुगेदर कॉल देम एंड लेट्स टॉक टू देम. तो टेलीमेनस एक हेल्पलाइन नंबर है, आई कॉल इसका आई कॉल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये आप हेल्पलाइन नंबर उसे दो, देन उनको इमीडिएटली छोड़कर ये सब देखे चले ना जाए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने रिस्क असेसमेंट किया है, लग रहा है हायर है, तो बी अराउंड देम एंड सी कि आसपास उन्होंने कोई भी ऐसे लीथल मटेरियल नहीं है, कोई भी ऐसे ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सेल्फ हार्म हो सके, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा एरिया जहाँ से वो जंप कर सके. सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू स्टे अराउंड देम, इवन इफ दे पुश यू कि नहीं आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, तभी भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे विद दैट पर्सन. वहाँ पर
1: ये सभी के काम आने वाला है, नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ एडल्ट हु इज अ ग्रोन पर्सन, एंड नॉट ओनली ग्रोन पर्सन बट हूएवर इट इज लिसनिंग, वो सबके काम आने वाला है.

0: Welcome back, and we were talking about suicide prevention, and we have a guest with us, Ms. Smita Mishra, and we will continue the topic.
1: Yeah. So ma'am, as a mental health professional, I have heard that there are so many myths and so many stereotypes around someone who's struggling through mental health. Or someone who has reached to a point where they are getting suicidal ideation. And the common myth that I have seen or heard about is that if you talk about suicide, it can make things more worse. Mm-hmm. So I want to ask that, is that true?
2: No. A single word answer, no. Talking about it helps us open the channel for conversation. The problem is not talking about it.
1: Mm.
2: And that exactly what leads to myth and stigma around mental health, क्योंकि हम बात नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? अगर सपोज जो आपने बोला ना, लास्ट मोमेंट तक पहुँच जाता है, तो यही है ना कि हम वेट करने लगते हैं. अगर सपोज कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, अगर चेस्ट में कोई बर्निंग सेंसेशन है, तो हम तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास. डॉक्टर एक्सरे वगैरह करा लेते हैं, सब टेस्ट कराते हैं, सब नॉर्मल भी आता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इट वॉज जस्ट एन एसिडिटी. बट हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं जस्ट टू गेट चेक्ड. हम वो हेल्प लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग हेल्प फॉर योर मेंटल हेल्थ, हम डिले कर देते हैं. और वो डिले की वजह से बात फिर इतनी आगे बढ़ जाती है कि दैट सुसाइड आइडिएशन इज नाउ हैज रीच टू द पॉइंट जहाँ पे अ पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट एंडिंग देयर लाइफ.
1: दैट इज completely true, that is correct. Can you tell me certain myths or stereotypes that you think that are very common among everyone regarding suicide?
2: Yeah, myths like talking about it will give out the impression that you are weak or you are not strong enough, or talking about it is not normal. So yahi jo not normal wala phenomena hai, लोगों को कंफर्टेबल इसलिए भी नहीं फील होता है बात करने में. नॉट जस्ट बिकॉज कि आसपास लोग नहीं है ट्रस्ट करने वाले. हो सकता है कि ट्रस्टफुल लोग हैं, हो सकता है फैमिली सपोर्टिव है, टीचर सपोर्टिव है, बट उन्हें वो बोलना नहीं आ रहा है क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं है. वो कोई मॉडल करने वाला कभी कोई एडल्ट था नहीं. सो व्हाई मोस्ट ऑफ द यंगर पीपल आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक अबाउट इट इज ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू टॉक अबाउट. They have never experienced a grown-up be vulnerable. या उन्होंने नहीं देखा है लोगों को express करते हुए उनकी weaknesses या अपने emotions के बारे में बात करते हुए उन्होंने नहीं देखा. तो when a child is growing up या थोड़े वो teenage या adult इसमें पहुँचते हैं, तो वो धीरे धीरे accept करने लगते हैं कि I think यही reality है. मुझे अगर mature रहना है then I need to be tough या I should not share it with anyone and I should deal with it on my own. And there are again me as I said ki media also has a role in it. So there's a lot of content on Instagram that sort of glorifies this whole thing of doing it all alone. And I'm not against of doing things alone, but it is normalized in such a way, it is glorified or romanticized in such a way that it is limiting people to take help. Why in India people who have never read, who were never interested in reading, why are they interested in reading self-help books? It is because the idea of helping themselves, yeah, taking care of their mental health is only up to them, their own responsibility. बाकी लोगों को इस पर इन्वॉल्व करने का कोई ज़रूरत है नहीं. ये ऑल दिस थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ लिमिटिंग देम इन आस्किंग फॉर हेल्प. या आस्किंग फॉर हेल्प वुड बी अ सेकेंडरी, सिंपली टॉकिंग अबाउट इट इज बिकॉज उन्हें नहीं देखा है कि कोई बड़ा उसके बारे में बात कर रहा होगा.
1: राइट.
3: I would give an opinion about this, कि हम generational gap होता है. When you talk about parents and when you talk about children, there is a lot of generational gap and understanding gap. जहाँ पे if we see आजकल के generation में mental health is very much important. And older generation को आप देखोगे जब, तो वहाँ पे I think physical health was much more important and awareness नहीं थी.
2: राइट.
0: आज की जनरेशन में वो अवेयरनेस है. अगेन मीडिया कम्स इन द प्लेस
2: वेयर इट हैज हेल्प्ड इन अ पॉजिटिव वे.
0: एंड थ्रू द मीडिया हम बता रहे कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है.
2: एब्सोल्युटली.
0: एंड छोटी से छोटी बातें रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है.
2: एंड राइटली रिपोर्ट करना, सेंसिटिवली रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट.
0: सो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो छोटे से छोटी चीजों को लेके डिस्टर्ब होते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी कुछ शेयर ही नहीं किया, बट दे आर इनटू वेरी मेजर, आई वांट नॉट यूज वर्ड डिप्रेशन, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई होती है, वो शेयर नहीं कर पाते. दे बिहेव वेरी नॉर्मल. एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं कि छोटी से छोटी बातें होती है तो दे आर एक्सप्रेसिव. So their nature is
2: different. Yeah. Yes, yeah. हर स्टूडेंट का तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का. कई लोग कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए कर पाते हैं, कई लोग कंफर्टेबल होके भी उन्हें शायद नहीं वोकैबुलरी मिल रही है कि कैसे कर पाए. और मैम आपने एक चीज बोली कि कई बार बच्चे जो है डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं बट कभी वो दिखाते नहीं है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस बिकॉज इट्स अ वेरी रियल थिंग. कई बार अगर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके घर पे किसी ने सुसाइड किया होता है तो लोग बोलते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, या कभी लगा ही नहीं कि ये इंसान अपनी जान दे सकते हैं. तो बाकी सारे जो चेंजेस हैं बिहेवियर में, इमोशन में जो दिख रहे हैं, ठीक है हम वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, बट काफ़ी बार साइंस ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाई देते या जो काफ़ी नॉर्मल हो गई है कि हमेशा हंसते रहना, एक दूसरे की हेल्प करते रहना, तो लोग जो है यहाँ पर फिर बात नहीं करते, उनको लगता है सब ठीक है. तो अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर सब ठीक है तो भी टाइमली चेकिंग करना और कम्युनिकेट करना, चैनल देना फॉर ओपन कम्युनिकेशन कि अगर कुछ है तो आप आके मुझसे बात कर सकते हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ सिंपली अज्यूमिंग कि ये इंसान तो सब अच्छे से कर रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके. लेट्स नॉट अज्यूम दैट.
3: And I would like to ask a question based on social media, where people have lot of, मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है दूसरे स्टूडेंट्स को हरास कर रहा है. देर विल बी हरासमेंट, देर विल बी अ डिप्रेसिंग थॉट्स वेयर स्टूडेंट इज शेयरिंग दोज काइंड ऑफ अ थॉट्स. ठीक है, it's not just a student, anyone.
2: Okay.
3: तो वो pattern observe करना, is that also a very important
2: thing? Very, very important. Very important. So यहाँ पे दो topic हैं, पहला एक harassment का है and दूसरा signs जो हमें social media post में दिखता है related to suicide. Harassment is a thing that we need to report. अगर हमें पता चल रहा है कि किसी बच्चे का picture किसी ने गलत तरीके से use किया हो या उन्हें कोई ऐसा content शेयर किया हो गया हो विच इज़ एक्सप्लिसिट या दैट मेड अ पर्सन फील अनसेफ, दैट इज वेरी, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिपोर्ट दैट केस एंड साइबर सिक्योरिटी का वहाँ पे हेल्प ले. सेकेंड अबाउट समवन पोस्टिंग थिंग्स विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, या कोई ऐसी पोइट्री लिखना जहाँ पे थोड़ा सा सैडनेस जो है वो झलक रहा है, या सैड स्टेटस लगाना, तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो हर महीने का है, इसका ये अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी है, ये करते हैं. तो आई जस्ट वांट टू से कि पिक अप दैट साइन, इवन दो इफ इट्स एन अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी, दे आर टेलिंग यू दैट दे नीड अटेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट इग्नोर देम. एंड हो सकता है कि उनकी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी ही हो कि वो सैड सब कुछ पोस्ट करें, फिर भी उनसे बात करो, टाइमली चेकअप करो, शायद वो डिसमिस करे इस चीज़ को, ठीक है शायद नहीं है वो चीज़, it is very important to ask because it's better to be safe than sorry, right? What if everything was right in front of them and humne assume kar liya ki it's just her personality or that's how the artist mind work. ye sab cheeze soch ke hame rukna nahi hai. agar hame lag bhi raha hai ki wo attention seeking activity hai, then it's a clear big sign, give them attention, talk to them.
4: ma'am, do you think like social media reach out to you first? वॉट एवर, लाइक आपका जो भी थाट्स या फिर फीलिंग्स आपके जो चल रहे हैं, ना सिर्फ थाट्स, सबसे पहले जो आपके पास रीच आउट करता है वो है सोशल मीडिया, बिकॉज जो भी आपका फीड रहता है एंड वो टोटली वर्क करता है आपके मेंटल स्टेट के ऊपर. लाइक if you are dreaming about something and the next moment you open the social media, you see them, like.
2: Okay, now about algorithm, आप media के student हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो यहाँ पे, तो फिर correct me if I'm wrong, do you think अभी कोई ऐसी technology आई है जहाँ पे phone जो है पढ़ रहा है हमारे dreams?
4: Yeah, I do think.
2: आई है?
3: I think moreover, पढ़ने से ज़्यादा whatever we are talking or whatever we are searching.
1: Exactly.
2: Yes, absolutely. That is being recorded and that's how your algorithm picks it up and then constantly आपको उसी चीज़ पे content बार बार दिखाया जाएगा और जब constantly उसी चीज़ पे वो exposure आ रहा है तो unconsciously जब आप फिर आप सोओगे तो आपको वो dream में भी आएगा. इट इज़ ट्रू दैट कॉन्स्टेंटली आपका फोन भी आपको रिमाइंडर दे रहा है कितनी सारी चीज़ के. एंड सुसाइड प्रिवेंशन के अराउंड जितना कॉन्टेंट है ऑनलाइन उतना ही इट इज़ शॉकिंग एंड बट इट इज़ सो रियल कि सुसाइड के अराउंड भी ऐसा कंटेंट है जो प्रमोट कर रहा है सुसाइड. मतलब आई रिमेंबर सीइंग अ पोस्ट दैट टॉक्स अबाउट कि पीपल हैव सो मैनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट यू बट फॉर दैट यू नीड टू एंड योर लाइफ.
4: Yeah, that's my point. Like, social media presents both positive and negative
2: perspective. Yeah, the extremes are there, right? So, अगर आप social media handle कर रहे हो या manage कर रहे हो, media को represent कर रहे हो, तो it is very important that you be sensitive and responsible while you are representing it. Now, media जैसे काफी help किया है media ने to give a platform जहाँ पे लोग openly discuss कर पा रहे हैं या educational content around mental health consume कर पा रहे हैं. काफ़ी सारे psychologist हैं, psychiatrist हैं जो content बना रहे हैं actively. But on the other hand, उस same algorithm में, उस same media में हमारे पास extreme content है जहाँ पे जो, क्योंकि अब psychological words काफ़ी available है. अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने नॉर्मली डिप्रेशन अ वर्ड यूज़ नहीं किया, आपने थोड़ा हेजिटेट किया वहाँ पर. So we need such like a responsible citizen if you are on media, because if my students are like listening to me, they know ki maine kitni baar unko bola hai do not casually use these words, their real mental health condition, do not use it in your bio that I'm a psychotic person, yeah, like do not make fun of these stuff.
3: Yes.
2: Do not make it cool ki kids of autistic something something bio mein likha hoga. So ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशन एज अ कंडीशन. हम किसी दूसरे फिजिकल कंडीशन को इस तरह से बायो में लिख के मजाक नहीं उड़ाते. तो दिस वर्ड्स का यूज करना इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे. इट इज सॉर्ट ऑफ डिसमिसिंग द एक्चुअल वैल्यू और सॉर्ट ऑफ मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू इट टॉक अबाउट इट ओपनली, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये तो मजाक की तरह लिया जा रहा है. So there are two extremes that we need to keep in mind, and as a professional media representative we need to be mindful of how we are presenting the content.
4: Like ma'am, jab hum media ke around revolve kar hi rahe, so do you also think ki jo PR works hote hain, like Instagram pe comment sections hote hain, that also like affect the audience? The person, koi ek particular person ko wo cheez affect karti hai, like comments. कमेंट्स हो गए और रिस्पॉन्स हो गए.
2: राइट राइट. एक रील रील पे किसी ने अगर समझो खुद का ही कोई फोटो पोस्ट किया हो, लेकिन इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर देम, बट देन समवन विल कॉल इट क्रिंज. कोई बोलेगा कि ये कैसा दिखावा कर रहे हैं या दिस इज सो क्रिंज. सो या पीपल आर आउट देयर टू मेक कमेंट्स जहाँ पे दे विल कॉन्स्टेंटली कंपेयर यू नो मैटर वॉट यू पोस्ट, दे विल criticize you. So yeah, that also that impacts a lot. उसका भी काफी ज़्यादा फर्क पड़ता है.
3: Referring to this, I remember one of the interview kind of पीछा चढ़ा था, जहाँ पे वो interview के time पे एक question आता है उसके पास कि does it impact आपके comment section में जो ये negative comments आते हैं, does that impacts you? So she comment on that कि दिल्ली में बैठ के चिंटू मेरे बारे में क्या बोलता है, व्हाई डज इट इंपैक्ट मी. सो दैट इज अ पॉजिटिवली शी हैज टेकन.
2: अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन. रिचा चड्ढा मे बी हैड दैट रिसोर्सेज अराउंड देम और मीडिया पीपल अराउंड देम हु वर देयर टू एडुकेट देम कि ये पीआर टैक्टिक्स है या दे आर जस्ट रैंडम बुलीज. But not everyone is equipped with that kind of support around them. Maybe someone is sitting in some rural area, because now internet is everywhere, screen touch, like good quality mobile phone is everywhere. So they are simply presenting everything, and they do not know that these are simply chatbots who are doing things like only to bully someone. So they don't understand, and wahan pe unko again depends on person to person and the kind of support that they have, their own coping mechanism, how they deal with situations like this.
1: With this related to one thing, I want to share one small experience. When we were doing, so Smita and me, we were in same degree college. We did our same bachelor's together in psychology, and we had this one professor. During our lectures, she was explaining something, and this particular one thing that she mentioned that time, which influenced me, and that I still use it. And I feel like if you are surrounded by such kind of people and you have such kind of awareness, it can help you to, you know, personally. And it was that she told me, never give a remote of your life to someone else to make you feel a certain way. And that I still use, that why will I let anyone else make me feel upset or happy or whatever I'm feeling right now. I have the control of myself right now. Whatever I'm feeling, whatever I'm saying, whatever I'm thinking, I have the control over my body, my thoughts and everything. I am not going to let anyone else make me or affect me about anything. Talking about this Instagram post, if someone is texting me, if I have that strong mindset, depends from person to person. If I have that strong mindset, it will not affect me. But if someone, if there's someone jinko ye choti choti baaton ka bahut farak padta hai, bahut bura lagta hai ki wo kya bolega, ye kya bolegi, usne mere bare mein kya socha, maine ye post dala to kya sabko acha lagega, aur us pe agar koi comment kare aise negative, to us insaan ko bahut farak padega. So it is very important ki you need to have like little that kind of surrounding, little awareness, little strong mindset, to, you know, have that kind of energy ki haan theek hai ab koi kuch bhi bole mujhe is cheez ka farak nahi padega, I am going to do my best in life.
2: Thank you for sharing that, Anshul. Actually, that sort of is, that is making me feel so grateful that we came from a background jahan pe hamare aas paas log the to remind us ki see that help is available, yeah, you can take care of these things. That's a privilege that still India mein bahut sare logon ke paas nahi hai, that the privilege of having people like our professors who are there to tell you that hey, I'm here to support you. Instead, like again maine jaise kaha ki kafi collective responsibility hai, to school ko bhi kaam karna hai, teachers ko bhi I feel ki training leni chahiye ki tum kaise हम कैसे एक माहौल क्रिएट कर पाए जहाँ पे बच्चा को ये ना फील हो क्लासरूम में आके कि मैं तो फेलियर ही हूँ. क्लास में जो रह के फेलियर फील हो रहा है, घर पे रह के फेलियर फील हो रहा है. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ बच्चों के साथ, हम एक्टिवली सच में सब जगह ट्रेनिंग कर ही रहे हैं और बच्चे एक्टिवली कंज्यूम कर ही रहे हैं कॉन्टेंट अराउंड मेंटल हेल्थ, बट वी नीड टू वर्क विद अडल्ट एज वेल, विद टीचर्स, विद पेरेंट्स, जहाँ पे वी ऑल्सो ट्रेन देम कि कैसे हम वो क्रिएट कर पाए सिचुएशन, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग भी इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है. अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी गो अहेड एंड गिव देम दैट. नाउ दिस विल अगेन मोटिवेट मी टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑनलाइन. थोड़े टाइम पहले मैं बात कर रही थी कि हो नहीं पाता है मुझसे कैमरे के सामने, पोस्ट नहीं कर पाती हूँ या टाइम नहीं मिलता है. दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम मीडिया को जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया में राइट रिप्रेजेंटेशन करने का काम भी फिर कौन करेगा. इट इज अप टू पीपल लाइक अस हू हैव राइट नॉलेज.
1: वन लास्ट क्वेश्चन. सो बींग अ प्रोफेशनल, वट इज समथिंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर आउट देयर, एनी थिंग दैट इट कैन बी पर्सनल और एनी थिंग दैट एवरी वन शुड नो दैट anything about suicide prevention?
3: And also adding to that question, I would add ki parents is pe kaise kaam kar sakte mainly, because bachcha parents ke sath rehta hai, wo bond create karna bahut important hai. Teachers rehte hain kuch ghanton ke liye hote hain, even that is important, but at the same time I feel, my personal opinion, that parents should actually be educated about the mental health.
2: yes पहले तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़ें कि रियल प्रॉब्लम्स है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है जो बोलने में, विच इज़ ओके, वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है. एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को ये बोलो कि नो मैटर वॉट आई एम योर फॉर यू. फिर अगर बच्चा, अगर आप ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर्स दे रहे हो बच्चे को, तो हो सकता है कि वो पर्सनल ज़्यादा चीज़ें या डे टू डे चीज़ें आके ना भी शेयर करें, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जहाँ पे बच्चा जेन्युइनली नीड्स हेल्प, उसको उस टाइम पे याद आएगा कि माय पेरेंट्स सेड टोल्ड मी दैट नो मैटर व्हाट आई एम देयर विथ यू. सो दिस कॉन्स्टेंट रिमाइंडर शुड बी देयर. एंड सिर्फ बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आके आपके साथ कम्युनिकेट करे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप भी कम्युनिकेट करो. मैंने पहले मॉडलिंग के बारे में बोला था कि बच्चे को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है किसी बड़े को उसके बारे में बात करते हुए. तो आप भी आके अपने, अगर आप अपने दिन के बारे में शेयर करो, अगर ऐसा है कि कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ हुई है या कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं जो आप बोलने में थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है बच्चे के साथ, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है पीरियड्स के बारे में बात करके. एज अ फादर और अ डॉटर या एज अ मदर और अ डॉटर फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ विस्परिंग मेक अ क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप ओपनली उसके बारे में बात कर रहे हो. इससे क्या होगा, अगर आप डिस्कम्फर्ट के साथ भी बात करोगे ना, तो बच्चा विल पिकअप कि मेरे पेरेंट्स ने इतने डिस्कम्फर्ट के बाद भी, इतना हिचकिचाने के बाद भी ट्रस्ट किया और ये डिस्कशन उन्होंने किया मेरे साथ, तो मैं भी फिर एज अ चाइल्ड सीखूंगी कि मुझे भी कितना मुश्किल लग रहा है, बट आई कैन ट्रस्ट देम एंड आई कैन ट्राई. सो दैट इज़ वन. एंड सेकेंड, फॉर लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे क्या बोलना है, कि अगर मैं अभी बोलूँ कि यू आर नॉट अलोन, ये काफ़ी ज़्यादा आयरनी हो जाएगी बिकॉज यू जेन्युइनली आर फीलिंग अलोन. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़, जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो पेन, वो आपको कमज़ोर नहीं बना रहा है. दैट डज नॉट मीन कि आप कमज़ोर व्यक्ति हो क्योंकि आप वो फील कर रहे हो. नो, द रियलिटी इज़ कि आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो वो पेन के साथ कोप करने के लिए शायद इनफ रिसोर्सेज आपको नहीं दिख रहा है. सिर्फ ये एक ही तरीका आपको दिख रहा है, दैट इज़ टू एंड योर लाइफ. बट ट्रस्ट मी, रिसोर्सेज है, वी डोंट नीड टू आंसर एवरी थिंग ऑल टुगेदर. हमको सब चीज़ का आज ही आंसर नहीं चाहिए. ये एक पॉडकास्ट इज़ नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन कि इसके बाद से सब ठीक हो जाएगा. नहीं, वी नीड जस्ट वन मोर नाइट, वन मोर डे, जहाँ पे वी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड दिस विल हेल्प अस लुक एट द रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू अस. सो द फर्स्ट थिंग, इफ आई वुड वॉन्ट टू वॉन्ट माई ऑडियंस या एनी वन हु इज हैविंग सुसाइडल आइडिएशन, इज जस्ट टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड टॉक टू समवन. टॉक टू एनी वन यू फील कम्फर्टेबल विद, योर क्लास टीचर, योर काउंसिलर, योर फ्रेंड या एनी इंटरेस्टेड अडल्ट दैट यू हैव अराउंड यू. एंड इफ वो भी नहीं आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझ पाएगा, देन आई ऑल्सो मैंशन फ्यू हेल्पलाइन नंबर्स दैट यू कैन रीच आउट, जैसे टेलीमानस या आई कॉल, तो आप इन पर भी रीच आउट कर सकते हो. अगर आप डिस्क्रिप्शन पर इफ यू कैन मैंशन दीज नंबर्स, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल.
3: सो दैट वॉज वेरी इंसाइटफुल कॉन्टेंट, एंड आई थिंक इस कॉन्टेंट से लेकर काफ़ी बच्चों को हेल्प होगी, काफ़ी अडल्ट लोगों को भी हेल्प होगी, एंड ऑल्सो आई वुड हाईलाइट कि पेरेंट्स को भी हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ. एंड बाकी जो जो भी सुन रहा है, मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल जाएगा इस एपिसोड. तो यू आर लिसनिंग आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. हमारे साथ थे मिस इशिता मिश्रा, हमारे साथ थे मिस स्मिता मिश्रा एंड आचल सिंह. साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू सो मच.

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तो मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

your voice. I am singing song. Soup song. Flop song.

0: आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? भाई सब अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारे प्यारे ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्ज किया है, सावन की बारिश से बदल गया मौसम, मौसम का बदलाव लाया खुशियों वाला ब्लॉसम, खुशियों वाला ब्लॉसम कहे मुझसे आज का खाना होना चाहिए ऑसम। ऑसम खाना मतलब नहीं जंक फूड, जंक फूड मतलब बिग नो। खाना हो ऐसा जो बदल दे मूड, मूड को बदलने अपनाओ देसी खाना, और आचार्य 90 FM वाला कोई सुमधुर गाना। सुमधुर गाने की मनभावन ताल और आरजे भारतीय सीमा पूछ रही अपनों का हाल। स्वाद और सेहत वाला हमारा ये शो, खाना खाते समय रफ्तार को कीजिए स्लो। स्लो रफ्तार मतलब आराम से खाना। हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने है माना, दुनिया के मानने से हाय हुआ है जोश। सुनिए आचार्य 90 FM, मत बैठिए सिर्फ खामोश। खामोश बैठकर अगर हो गए हो बोर, तो बनाइए आज की रेसिपी और बोल में कीजिए पोर। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लाल चावल का सूप। भाई बारिश का मौसम और रिमझिम बरसता हुआ सावन, तब हर किसी का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना खाया जाए। ऐसे में बाहर से कुछ ऑर्डर करने से अच्छा है कि हम अपने घर पर ही कुछ हेल्दी खाना बना ले, है कि नहीं? वैसे भी बाहर वाला खाना खाकर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि हम कुछ नया और सात्विक खाना अपने घर पर ही बना ले। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी टाइप की है। व्रीही इस संस्कृत नाम वाले लाल रंग के चावलों को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक टेस्टी सूप। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसे पटनी के नाम से भी जाना जाता है। इन लाल चावलों से रोटी, पायसम, इडली और तरह तरह की रेसिपीज को बनाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल होते हैं। लाल चावल का टेस्ट थोड़ा अखरोट जैसा होता है। इन लाल चावलों से बना सूप पीने से पेट भरने वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते के समय इसका सूप आप जरूर पीजिए और दिन की शुरुआत एक हेल्दी स्टाइल से कीजिए। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। लाल चावल मींस व्रीही का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। लाल चावल लगभग एक मुट्ठी मींस अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच, प्याज एक मीडियम साइज अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, गाजर एक छोटा सा ये भी 50 ग्राम, बीटरूट 50 ग्राम, पानी 4 बड़े कप, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग एक चुटकी नमक ले रही हूँ, देसी घी 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को धो लेंगे, फिर हम बीटरूट का छिलका हटाकर उसके टुकड़े करेंगे। इसी तरह से हमें प्याज को भी काटना है। उसके बाद हम गाजर को भी धोकर उसके टुकड़े कर लेंगे। लाल चावल का सूप बनाने की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन इतना काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
1: इज दैट क्लियर?

0: हो रहा है?
1: सॉरी सर।
0: जंग में गोलियां चलेंगी तुम्हारी, सॉरी नहीं।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें लेना है मोटे बेस वाला एक बर्तन। उस बर्तन में हम डालेंगे गाजर, बीटरूट और प्याज। फिर हम उसमें डालेंगे लाल चावल और उसके साथ 4 बड़े कप भर के पानी। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है। जब तक ये सारी चीजें उबलकर 1/4 ना बन जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। हमें एक बड़ा कप भर जाए इतनी क्वांटिटी वाला इसका सूप बना लेना है। वैसे इसे लो फ्लेम पर पकाना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसे सीधे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पर पकाने से इसकी छींटे थोड़ी कम उड़ेंगी। इसे पकाते समय आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सूप को सर्व करते समय आप नमक डालिए। जब तक ये सूप पककर 1/4 ना बन जाए तब तक इसे पकने दीजिए। फिर आप गैस को बंद कीजिए। उसके बाद हमें इसे छानना है, मींस सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करना है। उसके बाद हम लेंगे एक सुंदर सा सर्विंग बोल। उसमें बड़े प्यार से हम डालेंगे लाल चावल का सूप। जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, भाई इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब इस सूप में हम डालेंगे घी और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम उस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। क्या बात, डार्क रेड कलर के सूप पर कोतमीर की हरियाली, आहा हा हा, जैसे उगते सूरज की लाली और साथ में प्रकृति की खुशहाली। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारा लाल चावल का सूप अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो गए हैं कितने बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट लाल चावल का ये हेल्दी सूप बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी सूप का लुत्फ बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप चाहे तो इस लाल चावल वाले सूप के साथ रोस्टेड पापड़ भी परोस सकते हैं। इस लाल चावल वाले सूप में मौजूद गाजर और बीटरूट से हमारी हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है और प्याज से हमें मिलता है फॉस्फोरस। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इस लाल चावल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हेल्दी वाला सूप। बारिश के मौसम में खिल गई धूप, लाल चावल से बनाइए हेल्दी वाला सूप। हेल्दी वाला सूप पीकर खिल जाएगा रूप। आप बनाकर तो देखिए जनाब, सगळ्यांनाच आवडणार खूप। इन चावलों का रंग है लाल, इसे बनाकर सजाइए अपने भोजन का थाल। लाल चावल संग डाला बीटरूट, अच्छी सेहत बनाकर आप भी बनिए क्यूट। बीटरूट के साथ आ गया गाजर, हीमोग्लोबिन

बढ़ाने वाला इस सूप में है सागर। इसे टेस्टी बनाने डाला है प्याज। अब बना ही दीजिए सूप, कल नहीं आज। गर्मा गर्म सूप में एक चम्मच घी, इसे पीते ही फ्रेशनेस ने दस्तक दी। चाहो तो डालो इसमें थोड़ा सॉल्ट, देसीपन अपनाना क्यों लगे फॉल्ट। व्रीही है इसका संस्कृत में नाम, सुनिए आचार्य 90 FM सुबह दोपहर और शाम। सूप का जायका बढ़ाने आप पापड़ को कीजिए रोस्ट, टेस्टी लगेगा खाना जब साथ होंगे हमारे दोस्त। ऑडियंस संग दोस्ती निभाने वाला वादा, आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी फर्स्ट रेसिपी तो बन गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई सूप के साथ अगर क्रिस्पी पकोड़ा भी हो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, ऐसा पकोड़ा जो डीप फ्राई किए बगैर बना हो। वैसे बारिश के मौसम में फिलहाल स्वीट कॉर्न्स तो आसानी से मिल ही जाते हैं, इन्हें भून कर या बॉईल करके खाना कॉमन सी बात है। लेकिन आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इन स्वीट कॉर्न से हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा, और इसे डीप फ्राई करने के बदले हम अप्पम पात्र में पकाने वाले हैं। तो जनाब तैयार हो जाइए हमारी अगली रेसिपी के लिए, जिसे खाकर हम और हमारे अपने एकदम खुश होने वाले हैं। क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बॉइल्ड स्वीट कॉर्न के दाने 2 कटोरी, आइदर येलो और व्हाइट, प्याज 1, बेसन 1/2 कटोरी, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कोथमीर 4-5 चम्मच, करी पत्ता 5-6, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 छोटा चम्मच भर के नमक ले रही हूँ, तेल आवश्यकता के अनुसार। क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को हम पतले टुकड़ों में काट लेंगे, फिर करी पत्ता को धोकर उसके भी बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो कड़ी पत्ता की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा निखर आएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने की थोड़ी तैयारी कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स के दाने। हमें उन स्वीट कॉर्न्स के दानों को बिना पानी डाले पीसना है। यहाँ पर आप एक बात का खास ध्यान रखिए, हमें स्वीट कॉर्न को दरदरा पीसना है, इसका फाइन पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। फिर इस दरदरे से स्वीट कॉर्न में हम डालेंगे प्याज, उसके बाद हम डालेंगे बेसन और चावल का आटा। इसको एक चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ हम ऐड करेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा हींग। इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। इन सब चीजों के साथ हम डालेंगे करी पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। इस मिश्रण में हमें पानी को नहीं मिलाना है। हमने स्वीट कॉर्न को पहले ही बॉईल किया था, मींस उसमें पानी ऑलरेडी है, और प्याज डालने से उस मिश्रण का मॉइस्चर थोड़ा और बढ़ जाएगा। फाइनली हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। इन सब चीजों को हम बड़े प्यार से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण से पकोड़े बना लेते हैं। ऑडियंस जी, आपको याद तो होगा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम पकोड़ों को फ्राई नहीं करने वाले हैं। इन्हें पकाने के लिए हम यूज करेंगे अप्पम पात्र। सबसे पहले हम अप्पम पात्र को गैस पर गर्म करेंगे। आप चाहे तो नॉन स्टिक अप्पम पात्र को यूज कर सकते हैं। फिर उसके हर खांचे में हम डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। इस तेल को हमें हर खांचे में अच्छे से फैलाना है। फिर चम्मच की मदद से हर खांचे में हम डालेंगे कॉर्न पकोड़ा वाला तैयार मिश्रण। इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना है। 10-15 मिनट के बाद एक चम्मच की मदद से उन पकोड़ों को हम पलट देंगे। भाई वाह, एक चम्मच तेल में पकोड़े पक गए, क्या बात। उन पकोड़ों को पलटने के बाद हम आधा चम्मच तेल और ऐड करेंगे। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर खांचे में तेल ऑलरेडी दिख रहा है तो और तेल डालने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमें दूसरे साइड से भी उन पकोड़ों को पकाना है, इसलिए इस प्रोसेस में लगभग 5 मिनट और लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, ये पकोड़े बनाते समय हम गैस की फ्लेम को लो रख रहे हैं। हाई फ्लेम पर पकने से हमारे कॉर्न पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अब हमारे गर्मा गर्म और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े हो गए हैं तैयार और हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं एकदम बेकरार। लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा रुकिए तो, जरा सुनिए तो भाई, इतनी भी क्या बेकरारी। इसका डेकोरेशन करना अभी बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम रखेंगे केले का पत्ता। उस केले के पत्ते पर हम रखेंगे तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। इसकी रंगत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उस पर टमेटो सॉस को थोड़ी मात्रा में डालेंगे। एक चम्मच की मदद से आप टमेटो सॉस की पतली लाइनें बना सकते हैं। ऐसा करने से इसको प्रोफेशनल वाला लुक मिलेगा। आप चाहें तो इसके साथ ताजे पुदीना की चटनी को भी सर्व कर सकते हैं। भाई बारिश के मौसम में ऐसी चटपटी और होममेड चीजें बननी ही चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। इस तैयार क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा को आप अपने हाथों से एकदम नजाकत से उठाइए, अपनी उंगलियों से उसका टेक्सचर फील कीजिए, फिर उसके अरोमा को महसूस कीजिए। भाई वाह, उसके बाद एकदम तसल्ली से क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा को अपने मुंह में स्वाहा कीजिए।
आहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। क्रंची और क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा मुंह में डालते ही हमारे सारे टेस्ट बर्ड्स एकदम खुश हो जाएंगे। फिर बिना इधर उधर ध्यान दिए एक और क्रिस्पी पकोड़ा अपने मुंह में फिर से डालना है। भाई छोड़ो ये डाइटिंग वगैरह, अपना देसी खाना तो सीजन स्पेशल होता है। थोड़ा खाने से आपकी डाइटिंग पे कुछ असर

नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपका मन एकदम खुश ही हो जाएगा। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर तो देखिए जनाब। इसे खाकर आप बारिश को एंजॉय करेंगे। इस क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा। आसमान में बजाया बिजली ने हॉर्न, पकोड़ा में डाला हमने स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के संग डाला चने का आटा, पकोड़ा खाकर मत देखिए आप वजन काटा। बारिश के मौसम को किया सेलिब्रेट, अप्पम पात्र में पकोड़ा हुआ जनरेट, चावल के आटे से पकोड़ा हुआ क्रिस्पी, थोड़ा सा तेल खाना नहीं बिल्कुल भी रिस्की, डेकोरेशन के लिए डाला थोड़ा सॉस, अपनापन जताने में नहीं है लॉस। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज सबसे पहले हमने बनाया एक हेल्दी सूप। लाल चावल, प्याज, गाजर, बीट रूट, इन चीजों को हमने उबाला, फिर उसे छानकर उसमें नमक और घी को भी डाला। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने उस पर कोथमीर डाली। इस प्रकार हमारा लाल चावल मींस व्रीही का सूप तैयार हो गया। फिर हमने बनाया बारिश सीजन स्पेशल एक पकौड़ा। बॉइल स्वीट कॉर्न्स, बेसन, चावल का आटा और कुछ मसाले डालकर हमने पकौड़ा का बैटर बनाया। फिर अपम पात्र में एकदम कम तेल में हमने लो फ्लेम पर इसे पकाया। इस प्रकार बारिश के मौसम को हमने हमारे आचार्य 90FM के प्यारे ऑडियंस के साथ एकदम टेस्टी और हेल्दी स्टाइल से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। और अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके पहले आपके फेवरेट आचार्य 90FM चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा। सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पर स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही हैं और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की, लेकिन कोई जॉब नहीं किया था। तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग कोई भी पत्रिका अखबार मतलब जो भी मिल जाता।

0: मुझे उसको पढ़ना है।
1: पढ़ना है, वाह वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
0: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
1: जी।
0: पधारो माँ पूजा को, पधारो माँ

0: सजाया है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आशा, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
2: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
1: जी,
2: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सबसे जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
1: अच्छा
2: पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा। हाँ
1: अच्छा,
2: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें, मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
1: जी,
2: वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना, तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था।
1: अच्छा,
2: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा, और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
1: अच्छा,
2: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है। फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
1: अच्छा,
2: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
1: अच्छा,
2: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई, तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी की बातें, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी। बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
1: अच्छा,
2: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
1: अच्छा,
2: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
1: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
0: जी।
1: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छू लें, न रोको उड़ाने

0: हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, बेचती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हूँ। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी, हाँ, तो वहाँ हम लोग

0: से मिलता है
1: जी,
0: जो पढ़ते हैं
1: हाँ।
0: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा,
1: अच्छा
0: है,
1: लिखा है
0: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे
1: हाँ।
0: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
1: हाँ।
0: वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
1: जी।
0: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे।
1: अच्छा।
0: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
1: हाँ।
0: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
1: हाँ।
0: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे, मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
1: हाँ।
0: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
1: जी।
0: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
1: जी।
0: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
1: हाँ।
0: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
1: जी।
0: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और
1: हाँ।
0: उन्होंने इस कहे अनकहे
1: हाँ।
0: शब्दों के कैनवास में
1: अच्छा,
0: छपी
1: छपी हाँ।
0: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
1: हाँ,
0: थी
1: हाँ।
0: एक जैसे ये है
1: आखर मुक्ता हाँ।
0: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
1: अच्छा।
0: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
1: अच्छा।
0: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
1: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
0: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
1: अच्छा।
0: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
1: जी
0: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
1: पढ़ना
0: लॉ करना है।
1: अच्छा।
0: मुझे आगे लॉ करना है
1: हाँ।
0: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
1: अच्छा।
0: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा विदाउट पे करनी है
1: हाँ।
0: पास में एक स्कूल था छोटा सा
1: हाँ।
0: और उसमें मैं जाने लगी वन
1: अच्छा।
0: मंथ मैंने पढ़ाया
1: हाँ।
0: उसमें जो था एक बच्चा भी था वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो।
1: अच्छा।
0: हाँ। वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
1: हाँ।
0: उसका नंबर बहुत अच्छे आए
1: हाँ।
0: कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
1: अच्छा
0: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू?
1: हाँ।
0: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी यार।
1: अच्छा।
0: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में मैं हूँ।
1: क्या बात है
0: मतलब मैं वो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से
1: हाँ।
0: तो ये मेरे को ना शुरू से था
1: हाँ।
0: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
1: हाँ।
0: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध
1: हाँ।
0: का गाय वगैरह रखते थे
1: हाँ।
0: तो वो जब लेते थे उनसे
1: हाँ।
0: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे
1: हाँ।
0: तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
1: अच्छा।
0: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
1: हाँ।
0: कि उसने 12th पास किया।
1: क्या बात है।
0: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई
1: हाँ।
0: सेट हो गई। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
1: हाँ, काम करते थे
0: हाँ, तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी घर
1: हाँ।
0: में रह के क्या करोगी ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैंने कब जो होगा मैंने उनको समझा लिया अगर
1: हाँ।
0: वो इसमें खुश है VRS लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
1: जी।
0: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
1: बराबर
0: बच्चे
1: हाँ।
0: भी बड़े हो गए अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे

0: ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए. जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी.
1: अच्छा.
0: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा. तो वो बहुत खुश हुए. आरएसएस के लोग थे
1: जी.
0: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए. मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ. ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
1: जी.
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
1: जी.
0: उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी. हाँ. ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ. तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए. हाँ. हनुमान टेकड़ी पर साइन पोलीबारा में वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए वहाँ आइए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे.
1: ठीक है.
0: वहाँ गए. वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी. फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया.
1: अच्छा.
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए. तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी. क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं और क्या है ना, थोड़ा इमोशनली अच्छे रहते हैं.
0: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन
0: से नहीं जाता.
1: हाँ.
0: वो सोच कर चला जाता है
1: जी.
0: फिर हम लोगों की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी. तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी.
1: उनका दुख दर्द देख के
0: सो नहीं पाती थी. तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है. आपको यही छोड़ कर जाना होगा, यही छोड़ कर जाना होगा जो भी देखा है. उनके साथ अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है. फिर आप पड़ जाओगे, क्या फायदा है.
1: बराबर.
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए.
1: हाँ.
0: तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी.
1: राइट.
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बस कीचड़ नीचे भी होती थी तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था.
1: हाँ.
0: गिरे ना कहीं. और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
1: रहते हैं
0: हम लोग, इतने बड़ों बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं. तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया.
1: अच्छा.
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था. तो जो हम लोगों को हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे. बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका.
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है उनको सेफ करना, उनको गाइड करना है.
1: राइट.
0: तो वो भी
1: करते हैं.
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी. ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था.
1: बराबर.
0: और आके बस
1: और आप ज्यादा
0: सोते थे.
1: हाँ.
0: मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने हमारे
1: कुछ
0: हाथ से
1: तो
0: कुछ
1: किया.
0: तो हुआ.
1: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं. ठीक है.
0: ठीक जी. थैंक यू.
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे
0: आप बताओ.
1: जिंदगी के बारे में. अभी हम जिंदगी के बारे में इतनी
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं.
0: कर लेगी छोटा सा है
1: जी.
0: चलेगा
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है. हाँ. कहते हैं ना
1: जी
0: जिंदगी, इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए.
1: जी बिल्कुल.
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ. जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ. ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात कल भी आई थी.
1: आज भी आई है.
0: कल भी आई थी और आज भी आई है. किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी. ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा. इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा.
1: क्या बात.
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पांव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई हूँ। क्या बात,
0: नई आशा नए सपने नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90 FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।